0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की है। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधार स्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यं च सुदृढतया परस्परं संबद्धमस्ति इति।

0: मान्यता अस्ति अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था वित्तीय निरीक्षणं संसदीय विशेषाधिकाराः विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालां आयोजयति कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एस पी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों आयोजक और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा इस्लामिक स्टेट लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण खनिज सूचना और संचार प्रौद्योगिकी स्वच्छ तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम

बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांधरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिक

कृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्लाह हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों

0: भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर

0: परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग। ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi strongly condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about parties' organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pehelgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
3: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. The two Prime Ministers stressed the need for resolute action to eliminate terrorist safe havens, dismantle terrorist financing networks and their nexus with transnational crime and halt the cross-border movement of terrorists. Towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific, the two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries. They welcomed the steady progress under the Quad framework and reaffirmed their commitment to enhancing practical cooperation. Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: India and Japan have reaffirmed the shared commitment to the salience of economic security as one of the

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: সৈয়দ আলী খামেনির শেষকৃত্যে যোগ দেবেন না। ভারতে নিযুক্ত ইরানের প্রতিনিধি আয়তুল্লাহ হাকিম ইলাহি জানান, ইরানের নেতৃবৃন্দের উপর ইসরায়েলের হুমকি রয়েছে, তাই এই মুহূর্তে জনসমক্ষে আসা তার জন্য নিরাপদ নয়। এদিকে বিহারের রাজ্যপাল সৈয়দ আতা হাসনাইন এবং কেন্দ্রীয় বিদেশ প্রতিমন্ত্রী পবিত্র মার্গারিটা ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়তুল্লাহ সৈয়দ আলী খামেনির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেবেন। সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসের একটি ক্যাফেতে বিস্ফোরণে কমপক্ষে 9 জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত 20 জন। সিরিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, ক্যাফেটি রাজধানীর হিজাজ এলাকায় প্যালেস অব জাস্টিস থেকে 100 মিটার দূরে অবস্থিত। এখনও পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার করেনি। বিশ্বকাপ ফুটবলের রাউন্ড অব 32 ম্যাচে ক্রোয়েশিয়াকে 2-1 হারিয়ে শেষ 16 জায়গা করে নিয়েছে পর্তুগাল। অন্য খেলায় গতরাতে অস্ট্রিয়াকে 3-0 গোলে হারিয়ে শেষ 16 পৌঁছেছে স্পেন। রাউন্ড অব 16-এ আগামী মঙ্গলবার স্পেন ও পর্তুগাল মুখোমুখি হবে। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকায়েচি সব ধরনের সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করেছেন। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়কদের জন্য 2 দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সূচনা করবেন। জম্মু কাশ্মীরের পহেলগাঁও ও বালতাল উভয় রুট থেকে পবিত্র অমরনাথ যাত্রা আজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। খবর এখনকার মতো শেষ হলো।
1: यो आकाशवाणी खरसाङ हो, प्रादेशिक समाचार सीमा क्षेत्रीबाट सुन्नुहोस्। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाले आज कोलकातामा पश्चिम बंगाल विधानसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूका लागि 2 दिनको संसदीय अनि विधायी कार्यसित सम्बन्धित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। यसको उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यहरूलाई संसदीय अनि विधायी कार्यको विभिन्न आयामहरूसित परिचित गराउनु हो, जसमा समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार अनि विधानसभाहरूमा उदाउँदो डिजिटल पहल सामेल छ। लोकसभा सचिवालयले बताए अनुसार कार्यक्रममा विधायकहरू, पीठासीन अधिकारीहरू अनि संसदीय विशेषज्ञहरू बीच संवाद अनि अनुभवहरूको आदान प्रदान हुनेछ। यस अवधि विधायी कार्यको प्रमुख आयामहरूलाई सामेल गर्न कैयौं तकनिकी सत्रहरूको आयोजन गरिएको छ, जसमा एक प्रभावी विधायक कसरी बन्ने, सदस्यहरूका लागि रीतिरिवाज, परम्परा अनि शिष्टाचार आदि सामेल छ। मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह तामाङले हिजो कोलकातास्थित राज्य सचिवालय नवान्नमा पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीसँग शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभयो। भेटको क्रममा मुख्यमन्त्रीले पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकोमा श्री अधिकारीलाई हार्दिक बधाई दिनुहुँदै सफल र फलदायी कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उक्त जानकारी मुख्यमन्त्रीले हिजो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पोस्टमा दिएका हुन्। भेटका क्रममा दुई नेताबीच विभिन्न महत्वपूर्ण विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ। विशेष रूपमा सिलगढी स्थित एसएनटी कम्प्लेक्समा उपचारका लागि आउने सिक्किमका नागरिकहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले निर्माण गरिने सुस्वास्थ्य भवन सिक्किम सम्बन्धी लामो समयदेखि रोकिएको प्रस्तावबारे छलफल भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्रीले यस योजनाको महत्वलाई स्वीकार गर्नुहुँदै प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको र सम्बन्धित विभागलाई आवश्यक अनुमति जारी गर्न निर्देश दिएको पनि उहाँले अवगत गराउनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीले उहाँको शीघ्र तथा सकारात्मक निर्णयप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एआईटीएमसीका प्रतिद्वन्दी गुटहरूसँग पार्टीको संगठनात्मक चुनावको बारेमा उनीहरूको विरोधाभास पूर्ण दावी र आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ताहरूसँग जवाब मागेको छ। आयोगले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ममता ब्यानर्जी र पार्टी नेता ऋतव्रत ब्यानर्जीलाई यस सम्बन्धमा दुवै पक्षको दावी र प्रतिदावीको बारेमा छुट्टा छुट्टै पत्र लेखिएको छ। दुवै पक्षलाई सोमबार साँझ 5:30 जवाब पेश गर्न निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ। पार्टीको सांगठनिक संरचना र पार्टीको तर्फबाट कार्य गर्ने अधिकारलाई लिएर तृणमूल कांग्रेसभित्र जारी खिचातानीका जो घटनाक्रम भएको हो। यस्ता विवादहरू निर्वाचन चिन्ह, आरक्षण र बाँडफोड आदेशद्वारा शासित हुन्छन्, जस अन्तर्गत आयोगले निर्णय लिनु अनि प्रतिद्वन्दीको दावी, समर्थन कागजात र विवादमा

संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड लोकसभा सचिवालय और पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय

Thank you so much. And now the lighting of the lamp, सभी से दीप प्रज्वलन समारोह में सम्मिलित होने का अनुरोध है।

0: উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা হল অনুষ্ঠানের। আমন্ত্রিত অতিথিরা, সম্মানীয় অতিথিরা মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করলেন অনুষ্ঠানের।
1: और अब विशिष्ट अतिथियों का अभिनंदन। मे आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल स्पीकर विल जस्ट शिफ्ट द लैंप एंड मूव ऑन विथ द फेलिसिटेशन सेरेमनी। द ऑनरेबल स्पीकर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली श्री रोथिंद्रो बोस, may I request you, sir, to felicitate the Honorable Speaker Lok Sabha, Shri Om Birla Ji. The Honorable Speaker Lok Sabha, Shri Om Birla Ji. Being felicitated by the Honorable Speaker, West Bengal Legislative Assembly, Sri Rothindra Bose. May I request Honorable Sri Rothindra Bose to do the honors for the Honorable Chief Minister of West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari.

श्री उत्पल कुमार जी, बंगाल विधानसभा के सचिव, लोकसभा और बंगाल विधानसभा के सभी अधिकारीगण, नमस्कार। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष और बंगाल विधानसभा के माननीय अध्यक्ष के संयुक्त सहयोग से सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में आयोजित उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अवसर पर 18वीं विधानसभा के लिए चुने गए आप सभी माननीय विधायकों को पुनः बधाई, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के आयोजकों से मैंने आरंभ में पूछा, जब मुझे प्रस्ताव मिला कि ऐसा कार्यक्रम कितने वर्षों पहले यहां हुआ था, मुझे अभी तक उत्तर की प्रतीक्षा है कि 3 दशक 4 दशक या 5 दशक पहले। बंगाल पुनर्जागरण की भूमि, महान संत रामकृष्ण की साधना, तप और आस्था से जो लौ आभा निकली, उसके सबसे तेज पुंज हुए स्वामी विवेकानंद, उनके ही तप संकल्प कर्मियों की साधना प्रेरणा से जो धारा निकली, उसका प्रस्फुटन था बंगाल की इस धरती पर, बहिर्मुखी चेतना का प्रस्फुटन। आध्यात्मिक तेज के रूप में हजारों वर्षों की गुलामी के मानस से निकल जाने की बेचैनी के रूप में क्रांतिकारी चेतना का प्रस्फुटन इसी बंगाल से हुआ। राजनीतिक चेतना का उद्घोष, समाज सुधार की पुकार, साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञान, कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां बंगाल की इस लौ ने देश में सृजन की नई धारा सृजित नहीं की। अगर नाम लो तो लंबा समय लगेगा, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, शरदचंद चट्टोपाध्याय, महर्षि अरविंद, जिन्होंने कहा राष्ट्रवाद महज एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, राष्ट्रवाद एक धर्म है जिस ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त। मैं जब उनके कमरे के आगे पांडिचेरी में खड़ा हुआ, बहुत कम लोगों को आज याद रहता है, 24 वर्षों तक एक ही कमरे में व्यक्ति ने साधना की, आप उस व्यक्ति की ऊंचाई समझ सकते हैं, जिसकी देन थी सावित्री। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी से लेकर प्रीतिलता वादेदार, सुहासिनी गांगुली, अंडमान के सेलुलर जेल के दीवालों पर कभी नजर डालिए, वो लंबी सूची जिन्होंने सोनार बांग्ला बनाने के लिए खुद को उत्सर्ग कर दिया। इस मिट्टी ने देश और दुनिया को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे मानवतावादी, वंकिम बाबू जैसे प्रखर राष्ट्रवादी दिए। यह वर्ष देश वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मिट्टी ने नेताजी सुभाष बाबू के रूप में अमर राष्ट्र नायक, कहूं तो अनमोल हीरा दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने नारा दिया एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। कला में अद्वितीय नंदलाल बोस, संविधान में उनकी कालजयी पेंटिंग्स, क्या क्या उल्लेख करूं इस धरती के धरोहर की, महानता की सूची लंबी है। फिलहाल हम उन्हें अनगिनत नामों के अर्जित उस गौरव, यश और गरिमा को ही याद करें। यह है आपके महानतम अतीत का अति संक्षिप्त तथ्य। बीच के दौर में 60-70 के बीच उसमें ग्रहण लगना शुरू हुआ, हटा तो बादल, 2026 के चुनाव में वह छटा है। नया सवेरा, पूरब में नया सूर्योदय, उस विरासत को सजाने, संवारने, निखारने और ऐतिहासिक मुकाम तक ले चलने का दायित्व आज आप चुने गए नए विधायकों, नीति निर्माताओं और कर्णधारों को जनता ने सौंपा। आप इतिहास के चुने नायक हैं, अपनी भूमिका आप पहचाने। पूर्वोदय, पूरब के राज्यों का उदय भी बंगाल पर निर्भर था, आप याद करें। याद करें, बंगाल जब विकास में देश में सबसे आगे होता था, उसकी रोशनी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों समेत बिहार, उड़ीसा भी पाते थे। अविभाजित बिहार और उड़ीसा इस के हिस्से थे। 2014 से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे हैं, पूरब के राज्यों के उदय से भारत की तस्वीर बदल जाएगी। अब वह सपना साकार करने का क्षण समय ने आपको दिया। आज दुनिया संरक्षणवाद से घिर रही है, युद्धों से विश्व की सप्लाई चेन टूट रही है। इस बार के दावोस के बैठक में जहां वर्ल्ड के टॉप थिंकर्स इकट्ठा होते हैं, वहां जो कनाडा के प्रधानमंत्री का भाषण था, उसका सार था जो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में पुराना वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो रहा है, जो बड़ा चर्चित हुआ। कहा कि स्ट्रांग डोमेस्टिक इकोनॉमी बनाए बगैर आज की दुनिया में कोई रास्ता नहीं, चाहे देश हो या राज्य हो, इट शुड बी एवरी गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी। आशय था कि आर्थिक ताकत बनना ही आज की दुनिया में विकल्प है। और भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 14 से ही लगातार आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, स्वदेशी अपनाने की अभियान का रूप दे चुके हैं, हर क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, स्पेस समेत सभी क्षेत्रों में। पर याद कीजिए बंगाल का वो गौरव, वो ऐतिहासिक दूरदृष्टि,

अग्रभूमि का जब बंग भंग के विरोध में बंगाल में उठे स्वदेशी आंदोलन को जिसने भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता से उसे परिचित कराया। यह समय है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को याद करने का, जिन्होंने 1901 में बंगाल केमिकल की नींव रखी। महान रसायन शास्त्री, महान गांधीवादी, अकादमिक वर्ल्ड में बहुत बड़े नाम, देश दुनिया में पढ़े, पर गांधीवादी। हालांकि 44 में वह नहीं रहे, देश की आजादी नहीं देख सके। पर एक छोटा प्रसंग बताऊं, गांधी लगातार परेशान रहते थे कि मैं अंग्रेजों से आजादी की मांग करता हूं, जो पत्र लिखता हूं, जो इंक है वो भी अंग्रेज बनाते हैं, हमारे देश में तो कोई बनाए। प्रफुल्ल बाबू ने सुलेखा स्याही बनाई, उसकी फैक्ट्री लगी। और मैं अगर कहूं कि मुझ जैसे लोग जो बड़े मामूली गांव से आते हैं, उन्होंने भी जीवन की शुरुआत इसी सुलेख स्याही से की, ये बंगाल का तीत और ताकत रहा है। प्रफुल्ल बाबू समेत अनेक, मैं नाम आपको बताऊं, आज जब भारत जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है, इनोवेशन और उद्यमिता पर ध्यान दिया जा रहा है, याद रखें हम डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, भौतिक शास्त्री डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बसु, डॉक्टर विधान चंद्र राय जैसे मेधा बंगाल की देन है, जिन्होंने विज्ञान के अलावा राजनीति के क्षेत्र को सक्रिय योगदान दिया। डॉक्टर मेघनाथ साहा जी तो लोकसभा के लिए चुने गए थे, फिर 52 में राज्यसभा के गठन के बाद 12 विभूतियों को राष्ट्रपति ने जिन्हें नॉमिनेट किया उसमें डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बसु भी थे। लंबे समय तक भारत की अर्थव्यवस्था का धुरी या केंद्र रहा बंगाल। पिछली सदी के पहले भाग तक भी राजस्थान गुजरात से लेकर अन्य जगह से व्यवसाय करने वाले व्यापार करने वाले अवसरों की तलाश में कलकत्ता आते थे। तब भी बंगाल पूर्वोत्तर भारत, बर्मा, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक सांस्कृतिक संपर्क का द्वार था। तो और अतीत में देख ले तो रूपनारायण नदी के तट पर स्थित ताम्रलिपि बंदरगाह सदियों दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारे समृद्ध व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा। यहीं से सम्राट अशोक ने सिंघल द्वीप श्रीलंका के लिए बोधि वृक्ष के साथ भगवान बुद्ध का संदेश भेजा था। भारत ने व्यापार और मानवीयता को कभी अलग नहीं किया, उसका केंद्र रहा है बंगाल। आज भी बंगाल के बिना एक्ट ईस्ट पॉलिसी की कल्पना नहीं हो सकती। बंगाल भारत का औद्योगिक हब था, क्या नहीं था बंगाल के पास, उर्वर भूमि, खाने, खनिज, नदियां और बंदरगाह, आर्थिक प्रगति के सभी संसाधन प्रकृति ने बंगाल को दिए, प्रतिभाओं का पुंज भी। 70 के दशक तक बंगाल के उद्योगों का अवसान काल रहा या विकास का, यहाँ के उद्योग या तो बीमार हो गए या फिर बाहर गए। बंगाल के जिन हुनरमंद कारीगरों ने ब्रिटिश उद्योग, ब्रिटिश सत्ता को टक्कर दी थी, वे अपनी ही चुनी सरकारों से हारने लगे, विवश होकर उन्हें पलायन करना पड़ा। आईटी खड़गपुर यहां बना, लेकिन बंगाल के उद्योग इन प्रतिभाओं को अब्सॉर्ब करने की स्थिति में नहीं थे। 61 में देश की जीडीपी के 10% हिस्सा के साथ बंगाल तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था था। 23-24 में भागीदारी घटकर बहुत कम रह गई। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के श्री संजीव सन्याल ने एक अध्ययन प्रकाशित किया है जिसमें 60 के दशक और मौजूदा हालात में राज्यों के आर्थिक परफॉर्मेंस का आकलन है। मैं सिर्फ एक दो चीजें और कहूं आपको कि दुनिया जब बदल रही थी और वो बंगाल जो आज सोचता था देश कल सोचता था, उसने बदलती दुनिया से बीच के वर्षों में कैसे देखना बंद कर दिया। चीन ने अपनी यात्रा 1949 में शुरू की, 29 वर्षों बाद 78 में पाया कि गरीबी समाजवाद नहीं होना, समाजवाद नहीं है, बेहतर होना आर्थिक विकास रास्ता है। सर्वहारा क्रांति 17 के 72 वर्षों बाद रूस को लगा कि ग्लासनोस्ट और प्रोस्त्रिका से मुकाम मिलेगा, तब तक देर हो चुकी थी। बगल के वियतनाम साम्यवादी पथ पर यात्रा के 32 वर्षों बाद पाया कि मार्केट इकोनॉमी से कैसे हम करेंगे। आज वियतनाम की स्थिति देखिए, मैं 88-89 में मेरी कर्मभूमि के 5 वर्ष यहां गुजरे हैं और बहुत कुछ सीखा बंगाल से, जिसने मेरे जीवन को समृद्ध किया है, वो कभी भूल नहीं सकता। माननीय विधायकगण, आपसे भी अपेक्षा होगी कि अगले 5 वर्षों में आप बंगाल की पुरानी कार्य संस्कृति बदलें, बंगाल की अर्थव्यवस्था में पुराना गौरव ऊंचाई लौटाएं। बंगाल के पहले सीएम, आज उनको कम लोग याद करते हैं, प्रफुल्ल चंद्र घोष, महान एकेडमिशियन, गांधीवादी का आदर्श जीवन, योगदान, संकल्प की बात कहें तो और समय लगेगा। डॉक्टर विधान चंद्र राय की प्रतिभा देन ने कैसे बंगाल का गौरव बढ़ाए कौन भूल सकता है। पर 26 में जैसा मैंने कहा, एक बड़ी उम्मीद जगी है। जो हमारे नए सीएम साहब हैं सुरेंद्र अधिकारी जी, उनके बयानों को देखता हूं, मेरी मुलाकात है पहली बार हुई, पर इतने कम समय में इतने डिसिसिव डिसीजन और बिना अनर्गल बातें को किए हुए, मैं उन्हें बधाई दूंगा कि वो बंगाल के जिस गौरव, जिस अतीत

0: की मैंने बात की, वो उम्मीद दिखाई देती, उस गौरव से भी वो आगे ले जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं। मैंने कहा कि सिटी ऑफ जॉय में 5 वर्षों तक मैं रहा और अनेक महान लोगों से मिला जो मेरे जीवन के स्मृतियों के अविभाज्य अंग है। पर एक का उल्लेख कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वो महान संपादक थे गौर किशोर घोषदा, बहुत बड़े पत्रकार। उनका वह घटना भारतीय इतिहास में दर्ज है, आपातकाल लगा जून 75 में। उन्होंने अकेले चुपचाप अखबार समूह के आगे सिर मुड़वा लिया, शोक के कपड़े पहन लिया और सड़क पर निकल पड़े और राहगीरों से कहा, जनतंत्र मारा गेलो, लोकतंत्र की हत्या हो गई। फिर उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी में प्रेसिडेंसी जेल से उन्होंने जो पत्र अपने बच्चों को लिखा, बेटे के नाम 13 वर्ष का बेटा था उनका, अद्भुत है। उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से मिला। मुझे फक्र है कि उनको मैंने नजदीक से देखा था और मुझे बहुत सीखने को मिलागा। आज उसी बंगाल को और आप गौरव पर ले जाने के लिए नए लोग हैं जिन्हें बहुत बड़ा दायित्व जनता ने दिया है। आज हम संचार क्रांति युग में हैं। AI ने संचार क्रांति को संवाद क्रांति में बदला है। यह रियल टाइम कम्युनिकेशन सुलभ है, यह आपके काम को सुगम भी बनाएगा और चुनौतीपूर्ण भी। आपको तत्काल सूचना भी मिलेगी और आपकी और आपके कामों की सूचना जनता को भी मिलेगी। अब सरकार से प्रमाणिक सूचना के आधार पर जवाब मांग सकेंगे, साथ ही आपकी जवाबदेही भी बढ़ेगी। यह युग लोकतंत्र में बढ़ती पारदर्शिता का दौर है, अतः आपके विचार व्यवहार और आचरण सदन के अंदर और बाहर अनुकरणीय बने, उस बंगाल के महान गौरव के अनुरूप बने जिसका हमने जिसकी झलक दिखाई। हमारे यहाँ कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है, प्रजा सुखे सुखे राज्य प्रजा नाम तु हिते हितम, यानी जनता के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है, राजा का अपना कोई हित नहीं होता। आज के अर्थ में लोकतंत्र ने राजा का यह दायित्व चुने हुई जनता ने चुने हुए प्रतिनिधियों को दिया है। आप उस महान विचार परंपरा के वारिस हैं। हमें विश्वास है कि आपका कार्यकाल इन आदर्शों के निर्वहन में श्रेष्ठ साबित होगा। अगले 2 दिन देश के विभिन्न राज्यों के बड़े वरिष्ठ हमारे अध्यक्षगण आए हैं, स्पीकर्स, अनुभवी सांसद, जानकार अधिकारी, आपके विधायी अधिकारों कर्तव्यों के विभिन्न आयामों से परिचित कराएंगे। अपनी बात खत्म करने के पहले मैं बंगाल विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के सभी अधिकारीगण, राज्य सरकार, सबको अतिथिपूर्ण सत्कार के लिए दिल से बधाई देना चाहूंगा। और प्राइड और प्राइड के अधिकारियों को जिन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। यह प्रशिक्षण प्रोग्राम विधायक के रूप में आपको दायित्व को निभाने में बहुत बखूबी मदद करेगा, इसका भरपूर उपयोग करें। हमारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बंगाल, नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरिवंश जी को। मे आई नाउ रिक्वेस्ट श्री किरण रिजिजू, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, फॉर हिज एड्रेस।

लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुरेंद्र अधिकारी जी, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश जी, पश्चिम बंगाल के सभापति स्पीकर रतिंद्र बोस जी, नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल असेंबली के रीता ब्रता बैनर्जी जी, संसदीय कार्य के राज्य मंत्री पश्चिम बंगाल उमेश राय जी, कई राज्यों से आए हुए माननीय स्पीकरगण, विशेष अतिथि पश्चिम बंगाल में मंत्रीगण और विशेष करके जो चुने हुए नए विधायकगण, मुझे पश्चिम बंगाल के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर एमएलएस का दो दिन कार्य के लिए आमंत्रित किया। मैं पश्चिम बंगाल के स्पीकर साहब रतिंद्र बोस जी को धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे याद किया और आपके बीच में आने का मौका मिला।

सभा में हमारे स्पीकर साहब आपके बीच में है, वो अपना विचार कभी शेयर करेंगे और हमारे उप सभापति राज्यसभा ने भी आपको शेयर किए हैं। पार्लियामेंट का जो प्राइड होते हैं उसका मैंने देखा है काफी अच्छा काम होता है। वेस्ट बंगाल असेंबली का साथ तालमेल करके जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दो दिन का इस कार्यक्रम में वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नए एमएलए हुए हैं उसका लाभ जरूर उठाएंगे। वैसे तो वेस्ट बंगाल असेंबली का इतिहास पुराना है और ऋतुव्रत जी ने कुछ अंश बताया 1860 से किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल से उभरते उभरते ये मॉडर्न वेस्ट बंगाल का असेंबली का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ब्रीफली जो बताया, मैंने भी पढ़ा है इसलिए इतिहास और इसके अंदर में मैं ज्यादा नहीं जाते हुए एक दो बातें मैं अपने ओर से रखना चाहता हूं। मुझे बताया गया कि ज्यादातर एमएलए नए फर्स्ट टाइम एमएलए हुए हैं इस बार। मैं जब उड़ीसा गए थे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उड़ीसा के माननीय स्पीकर मैडम भी यहां आए हैं। हमारे देश में दो महिला स्पीकर है असेंबली के, एक हमारे उत्तराखंड के हैं और हमारे उड़ीसा के स्पीकर, दो महिला स्पीकर हुए। तो जब हम उड़ीसा गए थे तो वहां भी ज्यादातर लोग पहले बार चुन के आए, लेकिन आज मैडम ने मुझे बताया अब सब एक्सपीरियंस हो गए हैं, दो साल में सारे नए लोग एक्सपीरियंस हो गए। सबको तो कभी ना कभी तो पहले बार चुन के आना है, सब चुने हुए तो पैदा नहीं होते हैं ना, सबको पहले बार चुन के आना होता है तो सबको पहले बार सीखना होता है और सीखते सीखते कोई लोग बहुत आगे जाता है। जिन्होंने लंबा पार्लियामेंट्री जीवन बिताना है उसका तय शुरू ही करते हैं। देयर आर मेनी पार्लियामेंटेरियंस दी लेजिस्लेटर्स हु हैव अ लॉन्ग टेन्योर एंड योर टेन्योर विल डिपेंड ऑन हाउ यू बिगिन योर जर्नी। पहला कदम अगर गलती हो गया तो फिर आगे भी कष्ट मिलेगा, इसलिए जल्दबाज करके कोई हासिल नहीं होता है। लोकतंत्र में हार्ड वर्क, परसिवियरेंस, कंसिस्टेंसी और मेहनत ये रंग लाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि सुबह से जब से असेंबली या पार्लियामेंट शुरू होता है अंत तक बैठता है, लेकिन ऐसा वाला बहुत कम होते हैं आजकल। और ज्यादातर एमएलए या एमपी ऐसे होते हैं अपना बात बोल के तुरंत निकल जाते हैं, दूसरा का सुनता ही नहीं है। अब दूसरा का नहीं सुनेंगे तो फिर मुझे लगता है कि लोकतंत्र में वो सही नहीं है। आपका विचार तो आप रख सकते हैं लेकिन दूसरे के सुनना भी उतना ही जरूरी है। और जो भी लेजिस्लेटर, जो भी पार्लियामेंटेरियन दूसरा का बात ज्यादा सुनता है, आप देखिए उसका जवाब ज्यादा सटीक होता है, क्योंकि वो सुनने के बाद वो तैयारी रहते हैं। कुछ लोग तो पढ़ के आते हैं और अपना भाषण देख करके तुरंत भाषण खत्म करके चले जाते हैं। पार्लियामेंट्री एथिक्स तो है, आप लोगों को आज शायद शाम को क्लास लेंगे, आपको बताएंगे, शेयर करेंगे, नियम होते हैं। और सुबह सुबह बुलेटिन भी इश्यू करते हैं कि कैसे खड़ा करना है, कैसे बात करना है, पीठ नहीं दिखाना है पीठासीन की तरफ, और अपना भाषण दे करके तुरंत नहीं जाना है, आपका नेक्स्ट वाला का सुनना है। कई एथिक्स आपका प्रैक्टिस करना होता है। तो पार्लियामेंट्री एथिक्स, पार्लियामेंट्री बिहेवियर का भी अलग एक तो होता है, लेकिन मैंने देखा है बहुत ज्यादा लोग मानते नहीं है इसको, बहुत कम लोग मानते हैं। परिस्थिति भी बदल गए हैं, इसलिए मैं एक जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हिंदुस्तान भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, तो पुराना लोकतंत्र होने के नाते हमारा जो व्यवहार है, हमारा बिहेवियर है, वो भी उस हिसाब से करना होगा। नहीं तो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन कमजोर होगा तो डेमोक्रेसी ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा। नहीं तो लोग मजाक उड़ाते हैं असेंबली पार्लियामेंट में क्या स्तर का डिबेट हो रहा है, डिबेट का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। डिबेट का स्टैंडर्ड नीचे गिरेगा तो लोग जिन्होंने वोट दिया है वो भी सोचेंगे कि हम लोग कैसे लोगों को वोट देकर के भेजा है। तो इलेक्टेड

रिप्रेजेंटेटिव का रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। मैं तो ऐसे जगह से आता हूं, ये वेस्ट बंगाल तो हमारे लिए कैपिटल जैसे है, कलकत्ता हमारे लिए सामने में तो दिल्ली दूर था पहले, बाद में दिल्ली कैपिटल हो गया तो हम लोग सीधा दिल्ली जाते हैं आजकल, कलकत्ता कम आते हैं। लेकिन हमारा पिताजी लोग का समय में तो कलकत्ता ही सब कुछ था हमारा नॉर्थ ईस्ट का, इसलिए हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल उठेगा तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी अपने आप उठ जाता है, पूरा ईस्टर्न इंडिया का भविष्य वेस्ट बंगाल पर टिका हुआ है। वेस्ट बंगाल बिखर जाएगा, वेस्ट बंगाल कमजोर होगा तो पूरा ईस्टर्न इंडिया कमजोर हो जाएगा। इसलिए अभी डिप्टी चेयरमैन साहब ने कहा शुभेंदु अधिकारी जी अच्छा काम कर रहा है, मैं तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में वेस्ट बंगाल तरक्की करे और पूरा ईस्टर्न इंडिया को आगे ले जाए और विकसित भारत का बहुत बड़ा इंजन बने। वेस्ट बंगाल बड़ा राज्य है और बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है। बिहार और बंगाल का जो एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन है कभी कभी सोचने से भी कल्पना करना मुश्किल है, इतना हेवीली पॉपुलेटेड स्टेट है। और यहां एक एक एमएलए कितना, कम से कम 2.5 लाख 3 लाख तो एक असेंबली का या वोटर है। यूरोप में, इंग्लैंड में 70,000 में एक एमपी होता है, और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, जो नॉर्दर्न नॉर्दिक कंट्रीज जिसको बोलते हैं स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, यहां 25,000 में एक एमपी होता है। इंडिया में एवरेज एक एमपी में लगभग 25 लाख है। वेस्ट बंगाल में एवरेज एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 3 लाख वोटर है। तो इसका मतलब इंडिया के अंदर में एमपी एमएलए बनना कोई आसान नहीं है, चुनाव तो जीत के आ जाएगा, 5 साल काम करना ये कोई मजाक का काम नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम लोग तो सुबह उठते ही कम से कम 200 आदमी पहले से इंतजार कर रहा है कि हमारा एमपी साहब कब उठेगा मदद मांगने के लिए। पश्चिमी दुनिया जो डेमोक्रेसी में कितना अंतर है, हम भी बोलता है वी आर ए डेमोक्रेसी, पश्चिम बंगाल भी वैसे डेमोक्रेसी है, उड़ीसा भी वैसे डेमोक्रेसी है, दिल्ली भी वैसे डेमोक्रेसी, सेम है, लेकिन लोकल कैरेक्टर में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। पश्चिम बंगाल में एक अच्छा चीज है कि असेंबली इलेक्शन और लोकसभा में ज्यादा रिसोर्सेस, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता है, ऐसे बोला है। यहां से बहुत कम्युनिस्ट एमपी आते थे जब हमारे साथ में शुरू में, मैक्सिमम एमपी वेस्ट बंगाल से लेफ्ट फ्रंट के एमपी आते थे, तो मैंने उस समय पूछा था जितना लेफ्ट एमपी से आप लोगों को कितना खर्चा होता है वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतने के लिए, बोलता नहीं 5,000, 6,000 या 10,000 खर्चा होता है, वो तो चाय पानी का खर्चा होता है, लेकिन वोटर को पैसा नहीं देते हैं। लेकिन कोई कोई जगह में वोटर पैसा भी लेता है इंडिया में आजकल, इसको भी कैसे बंद करना है हम लोग को सोचना होगा। पैसा देकर के इलेक्शन जीतना तो ठीक बात नहीं है, लेकिन इंडिया का पॉलिटिकल कैरेक्टर और वेस्टर्न वर्ल्ड का डेमोक्रेसी में कितना अंतर है। मैंने किसी विधानसभा में यह जिक्र किया था, मैंने बताया था मैं इंग्लैंड में जब गया तो इंग्लैंड में सबसे सीनियर मोस्ट एमपी, उसको फादर ऑफ द हाउस बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में, वो 7 टाइम्स एमपी कंटिन्यूस जीतने के बाद उसको टाइटल मिला है फादर ऑफ द हाउस। हमारे यहां फादर ऑफ द हाउस कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे ले गए 2004 में, एक पार्लियामेंट्री एक्सचेंज प्रोग्राम था। तो इंग्लैंड, साउथ इंग्लैंड में सेंट स्टेफर्ड शायर, साउथ स्टेफर्ड शायर, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे ले गए। तो एमपी साहब ने मुझे दिन भर घुमाया, देखो यहां एक एमपी का जिंदगी कैसा है इंग्लैंड में, मुझे दिखाया। दिन भर में एक भी आदमी उसके पास मदद मांगने के लिए नहीं आया, कोई एप्लीकेशन देने के लिए नहीं आते वहां में, रात को फोन करके कोई चीज मांगता नहीं है वहां में। डेवलप कंट्री है और सब कुछ व्यवस्थित है, वहां अगर कोई इश्यू होता है तो जैसे कोई क्लाइमेट इश्यू होगा, टैक्सेशन पॉलिसी मैटर, या कभी लॉ एंड ऑर्डर इश्यू होगा, तो वो भी जनरल लोग गैदरिंग करते हैं और अपना प्रतिनिधि, अपना एमपी एमएलए को बताते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है।

वैसे आदमी कम है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, ऊपर से कंप्लेन देने वाला कोई नहीं है। यहां हम लोग एक एमएलए का कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 लाख आदमी, ऊपर से सुबह से शाम तक कंप्लेन देने वाला बहुत होते हैं, पानी का प्रॉब्लम मांगने के लिए, एजुकेशन का, हेल्थ का। कोई कोई जगह में तो आदमी मारपीट करके जेल जाता है, वो बेल निकालने का खर्चा भी एमपी दे दो बोलता है, एमएलए दे दो बोलता है। हमारा देश का प्रॉब्लम मामूली नहीं है। पश्चिम देशों में, इंग्लैंड वगैरह में या अमेरिका में, मैं तो बताता हूं, आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जिंदगी और भारत में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क है। वहां एक बार इलेक्टेड हो गए तो सिर्फ सोचना है, भाषण देना है। यहां तो हम लोगों को सोचना भी है, भाषण भी देना है, लोगों का प्रॉब्लम भी घर घर सॉल्व करना है। मामूली नहीं है हमारा जिंदगी। इसलिए इंडिया के अंदर में किसी भी राज्य में एमएलए एमपी होना ये कोई आराम का मामला नहीं है। पहले आप आराम से जी सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप इलेक्टेड हो गया तो सोच लो आपका असली जिंदगी कठिन शुरू हो गया। इसलिए एमएलए एमपी हो गया बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, यहां आराम मिलता नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करके फिर आप अगले इलेक्शन फिर लड़ना है। और आप सोचो दो तीन बार जो जीतता है तो और कितना मेहनत करना पड़ेगा। हम भी 8 बार चुनाव लड़ चुका है। कोई ना हमको देख के बोलता है कि ये तो जवान दिखता है, अरे मेरे चेहरे पे मत जाओ, मैं 8 बार चुनाव लड़ चुका हूं। मैं जब लॉ मिनिस्टर था तो चीफ जस्टिस हमको बोला, आप तो लगता है यूनिवर्सिटी से सीधा सीधा चुन के आए हैं। मैं बोला आपको पता नहीं, आप जज बनने से पहले मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूं। तो आपका हर चुनाव में एक्सपीरियंस अलग अलग होते जाते हैं और सेम स्टाइल कैंपेन नहीं होता है। कुछ कुछ एमएलए एमपी का कैंपेन का स्टाइल भी अलग अलग होते हैं और पब्लिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए भी मेथड होते हैं। आजकल मोबाइल के जमाने है, तो मोबाइल के जमाने में तो काफी आप तरीका निकल सकते हैं, लेकिन हर मोबाइल हर वोटर का आप डायरेक्ट बात तो नहीं कर सकते। एक दिन आप कितना बात करेगा, 200 300 10,000 तो बात नहीं कर सकते। खाना खाना भी है, सोना भी है। तो इसलिए एक एज ए लेजिस्लेटर, एज ए पार्लियामेंटेरियन हमारा जीवन बहुत कठिन है। लेकिन ये कठिन है मालूम हो कि हम आया है, ऐसे तो हम तो चुनाव आराम करने के लिए तो नहीं आया है, जनसेवा के लिए आया है। इसलिए हमको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब मेहनत करने से पहले नियम कानून सिस्टम जानना बहुत जरूरी है ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सके। ओरिएंटेशन नए एमपी एमएलए के लिए होते रहते हैं, पार्लियामेंट में भी हर चुनाव के बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते रहते हैं। आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर उनका भी तो अपडेट होते रहते हैं, उनका भी उसका फेस वाइज उसका ट्रेनिंग चलता है। जिंदगी तो ट्रेनिंग होते रहना है। मैं 8 बार चुनाव लड़ा, मैं इतना बार जीता है, मुझे सीखना नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता है, सीखते रहना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने आर्ट ऑफ लेजिस्लेशन सीख लिया तो असेंबली में उसका दबदबाव रहता है। ये प्रेमचंद्र देखो हमारा, ये इनके प्रेमचंद्र, ये हमारा रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एमपी है, केरल से आया है। इनको बुलाया, अच्छा किया, ये अकेला आदमी है, इसके पार्टी का एक ही एमपी है, लेकिन ये पार्लियामेंट में ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उसके पास 10 एमपी है, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव आदमी है। तो इसका बात सुनता है, स्पीकर भी मौका देते रहते हैं इसको। लोग सोचते हैं कि स्पीकर साहब और इसका बेस फिक्सिंग है क्या, बेस फिक्सिंग नहीं है, वो इफेक्टिव पार्लियामेंटेरियन है, इसलिए मौका मिलता है इसको। इसलिए दूसरे एमपी को भी सीखना है, मौका मिलना है तो बिहेवियर अच्छा होना होगा। जो अच्छा बिहेवियर नहीं होगा उसको स्पीकर पसंद नहीं करते हैं। तो ये अपना वेस्ट बंगाल के स्पीकर साहब है, वो भी उसी को ज्यादा मौका देगा जो नियम से बोलेगा, सिस्टम से बोलेगा, तरीके से पेश आएगा। सिर्फ नाराबाजी लगाते रहेगा और गाला गाली करेगा तो उसको मौका ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों के ऊपर में बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। नया नया असेंबली बनने के साथ साथ स्पीकर साहब कॉन्टेक्ट किया मेरे मिनिस्ट्री से, हमने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का ऑलरेडी इनका एमओयू साइन कराया है। उस दिन मेरे ऑफिस में दिल्ली में मीटिंग हुआ, हमारा मुख्यमंत्री सुरेंद्र अधिकारी जी भी यहाँ ऑनलाइन जुड़े, मैं था हमारे सामने में साइन किया। तो मैं आपको वादा करता हूं, स्पीकर साहब नए हैं लेकिन बहुत एक्टिव है। विद इन

0: नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के अंदर में वेस्ट बंगाल असेंबली 100% डिजिटल हो जाएगा। हमने फर्स्ट फेज पैसा भी रिलीज कर दिया है और वन नेशन वन एप्लीकेशन का इस प्रिंसिपल को लेकर के हमारा जो ई गवर्नेंस का स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन एप्लीकेशन, ये पूरा देश भर के जितने असेंबलीज है और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसको एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का कार्यक्रम शुरू किया। तो इसमें वेस्ट बंगाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होते ही जुड़ गया और इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया। मेरा ऑफिस का मिनिस्ट्री का ऑफिशियल टीम को भी हम भेजेंगे और पूरा आपका मैन पावर सब कुछ हम समर्थन देंगे। वेस्ट बंगाल असेंबली इतना पुराना असेंबली है, ये अच्छा से चले उसके लिए हम लोग जितना भी मदद भारत सरकार और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री से जो मदद होगा हम देंगे और बाकी तो हमारा पार्लियामेंट की ओर से स्पीकर साहब और डिप्टी चेयरमैन तो यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए कोई फिक्र करने का नहीं है। मैं और ज्यादा नियम नीति के बारे में बात नहीं करूंगा अभी क्योंकि इनॉग्रल सेशन है, जब टेक्निकल सेशन होगा तो उसमें काफी हमारा जो अलग अलग असेंबली का स्पीकर सब यहाँ आए हुए हैं वो अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे आपके साथ में और बाकी एक्सपर्ट्स लोग भी आए हैं। इसलिए मैं फिर से मुझे यहाँ बुलाने पर मैं आभारी प्रकट करना चाहता हूँ और उम्मीद जताना चाहता हूँ कि ये 2 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारा पश्चिम बंगाल के नए चुने हुए एमएलए के लिए बहुत लाभदायक होगा और आपका डिजिटल पूरा होने के बाद हर एमएलए का हाथ में सारा असेंबली का इंफॉर्मेशन एक क्लिक, कोई बिल है, कोई बिजनेस है, क्वेश्चन है, सारा चीज आपको कुछ तकलीफ करने नहीं होगा, एक बटन दबाने से आपका हाथ में अवेलेबल हो जाएगा। तो स्मार्ट असेंबली स्मार्ट लेजिस्लेटर ऐसा हमारा वेस्ट बंगाल का बनेगा मैं उम्मीद करता हूं और फिर आपका भविष्य में अच्छा हो, आपका वेस्ट बंगाल का भविष्य के लिए, आपका अपना निजी भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करते हुए अपने बात को मैं समाप्त करना चाहता हूं। जय हिंद, जय वेस्ट बंगाल।
1: थैंक यू सो मच सर, पर्टिकुलरली फॉर शोइंग अस द विजन ऑफ द स्मार्ट फ्यूचर। श्री शुभेंदु अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंग, अब हम आपसे संबोधन के लिए आग्रह करते हैं।
2: भारत माता की, भारत माता की, वंदे। रिस्पेक्टेड मिस्टर ओम बिरला जी, ऑनरेबल स्पीकर, द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम इन आवर कंट्री, ही इज लीडिंग द पार्लियामेंटरी सिस्टम। प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट रिगार्ड्स फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। मंच पर हमारी राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरपर्सन हरिवंश जी है, मैं उनको आभार प्रकट करता हूं और उन्होंने बड़ा शानदार भाषण भी दिया है यहाँ इनोग्रेशन जो हमारी चल रहा है सेशन। हरिवंश जी, ये सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता में पत्रकार के रूप में, मीडिया पर्सन के रूप में काम किया, मैं फिर एक बार उनको स्वागत और वंदन करता हूं। मिस्टर किरण रिजिजू जी सिटिंग ऑन द डायस, इज वेरी वेल नोन पर्सन टू मी, उनका साथ मेरा पिछले कोई साल काम करने का मौका मिला, आगे भी मिलेगा। मैं किरण रिजिजू जी को मेरा दिल से आभार प्रकट करता हूं। ये पूरा जो अरेंजमेंट है उनका अरेंजमेंट किया है हमारी स्पीकर साहब रथेंद्र बोस जी, ही इज ए वेरी डायनामिक एनर्जेटिक स्पीकर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेस टू मिस्टर रथेंद्र बोस आवर ऑनरेबल स्पीकर। उमेश राय जी है एमओएस पार्लियामेंटरी अफेयर्स,

and leader of opposition Ritabrata Banerjee. इस दो दिन का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ओरिएंटेशन हमारी जो कार्यक्रम इसमें बहुत सारा प्रदेश से अध्यक्ष जी आया है खास करके यूपी मध्य प्रदेश राजस्थान ओडिशा सिक्किम मैं सबको पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से तहे दिल से मैं वेलकम कर रहा हूं आभार प्रकट कर रहा हूं और पार्लियामेंटेरियन मिस्टर प्रेमचंद जी भी सिटिंग इन दिस हाउस आई वुड लाइक टू कन्वे माय बेस्ट विशेस मिस्टर प्रेमचंद जी और हमारे साथ पश्चिमबंग विधानसभा समस्त सदस्य सदस्यरा हमार कलिग मिनिस्टररा एवं व्यवस्थापना जरा कर स्पीकर सचिवालय और राज्य सरकार आधिकारिक तारा आछेन खास करके जो हमारी पार्लियामेंट से जो आधिकारिक लोग पार्लियामेंट का सचिव से लेकर सब लोग ने इसको मदद किया है इतना डेढ़ महीने का सरकार है असेंबली है उसमें आप लोग इतना मदद किया इसलिए इतना अच्छा कार्यक्रम एक मीनिंगफुल ओकेजन ऑर्गेनाइज हम लोग किया इसलिए लोकसभा सेक्रेटरिएट को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। पहले तो मैं ज्यादा बात नहीं भूलूंगा आज सब एमएलए लोग का इस ओरिएंटेशन कैंप में अच्छा करके सीखना है जो बात कुछ दिन पहले मिस्टर रिजू जी ने बताया ये कोई पहली बार जो चुन के आता है उनको सीखना पड़ता है इसलिए ये दो दिन का कैंप में आप सबको सीखना पड़ेगा लेकिन ये जो असेंबली है इसका जो एक इतिहास है ये सबको आज बोलना मैं चाहता हूं ऑनरेबल स्पीकर साहब है मिस्टर ओम बिरला जी अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट सिटिंग ऑन द डायस 1947 जब हमारी देश को बाइफरकेट करने के लिए बात चल रहा था ब्रिटिश का साथ और उस वक्त ये बंगाल जो अनडिवाइडेड बंगाल था ये कहां जाएगा पाकिस्तान में जाएगा या इंडिया में रहेगा इसके ऊपर बहुत सारा बात हुआ डिस्कशन हुआ बहुत सारा चर्चा हुआ फाइनली रूलर गिवन टाइम ब्रिटिश दे डायरेक्टेड ये प्लीज आप लोग जो आज जो असेंबली है विधानसभा उनका नाम था आईन सभा जो आप वहां जाओ वहां जाकर मेजोरिटी का ओपिनियन लो ओपिनियन लेकर आओ उसका बाद हम लोग फैसला करेगा ये अनडिवाइडेड इंक्लूडिंग ईस्ट एंड वेस्ट दोनों एक साथ पाकिस्तान में जाएगा ईस्ट जाएगा पाकिस्तान में वेस्ट रहेगा भारत में देखिए उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आईन सभा का मेंबर था उन्होंने ये मुद्दा उठाया एज पर द डायरेक्शन एडवाइस बाई द रूरल ये कहां रहेगा पूरा दिन बहस हुआ उसका बाद 58 लॉ मेकर्स कास्टेड देयर वोट इन फेवर ऑफ इंडिया एंड 21 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान इसलिए आज जो खास करके मैं बंगाल से आती हूं सॉन ऑफ द सॉयल हूं ये बंगाल भारत में है इसके सबसे बड़ा डिसीजन इस असेंबली में हुआ था ये नहीं होता तो पिछले क्या था आने वाला दिन क्या होगा वो तो बाद में है आज जो हम भारत माता के चरण में हम लोग आश्रय मिला है ये पूरा श्रेय असेंबली से असेंबली का है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है उनकी 125वां जन्म जयंती 6 तारीख है उसको मैं मेरा दिल से नमन और वंदन करता हूं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रहता तो हम लोग आज इतना भाषण देने का काम चुनाव लड़ने का काम जीतने का काम राजनीति करने का काम हम लोग को मौका नहीं मिलता ये हमारी आज का ये ओरिएंटेशन कैंप में सबको स्वीकार

बताया स्वतंत्रता का बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ उसका बाद इतना बुरा हालत बंगाल में नहीं था। पहले तो 34 ईयर्स पार्टी ऑफिस से सब होता था, असेंबली से कुछ नहीं होता। और पिछले 15 साल तो क्या हुआ मैं आज नहीं बताऊंगा। ये एलओपी है, सब है, हम लोग एक साथ चल रहा है, अभी खड़ा करना है। मेरा अनुभव जो है 2006 का एमएलए डिवीजन कम्युनिस्ट रूल, उसका बाद 2016, उसका बाद 2021 एलओपी, वो जो असेंबली खास करके लीडर ऑफ अपोजिशन, आप ये कोई निंदा का बात नहीं है, अपना असेंबली का आपका राज्य का कोई निंदा करने का कोई चीफ मिनिस्टर का शोभा नहीं होता है। लेकिन मैं ही बता रहा हूं यहां जो सिस्टम हो गया था, एमएलए एमपी का कोई मर्यादा नहीं है, कोई मर्यादा ही नहीं था। एक बीडीओ थानादार वो एमएलए का फोन भी नहीं पकड़ता था, हर डिस्ट्रिक्ट में दिशा कमेटी का मीटिंग भी नहीं होता था। कोई सरकारी कार्यक्रम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, फाउंडेशन स्टोन लेइंग, इनोग्रेशन, उसमें आप लोग को इनविटेशन नहीं मिलता था। स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जयंती, बंगाल में सरकार की एक्सचेकर से जो कार्यक्रम होता था उसमें कोई विधायक, वो विधायक कुछ विधायक को मिलता था, उनका पॉलिटिकल आइडेंटिटी को देखते हुए उनको इनविटेशन मिलता था। ये ठीक नहीं है। चुनाव होगा, चुनाव के दौरान पॉलिटिकल फाइट होगा। पिछले 5 साल में एनओपी था, एक भी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में नहीं बुलाया। मुझे 5 बार असेंबली से सस्पेंड किया, 7 महीने के अंदर 11.5 महीने असेंबली का बाहर एलओपी था। हर बजट सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन जब आता था उसको सस्पेंड कर दो, उसको सस्पेंड कर दो, इस तरीके से हालत था। लेकिन आज हालत बदल गया, जनता ने बदल दिया, पूरा मौसम बदल गया। मैंने 5 बार ये 1.5 महीने में एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग किया, सब एमएलए को बुलाया, मेरा पार्टी का एमएलए लोग को भी बुलाया, अपोजिशन का एमएलए लोग को भी बुलाया। बजट हुआ हमारा, रूलिंग पार्टी का एमएलए का काम भी बजट में है, अपोजिशन का काम भी बजट में हम लोग रखा है। एक साथ बंगाल को खड़ा करना चाहिए। स्पीकर साहब मुझे बोल रहा था मंच पर, ये शुभेंदु जी बंगाल में पहले जैसे माहौल था वो बना दीजिए। इसमें इतना हाई रीच ह्यूमन रिसोर्स है, ये हमारी डिवोशनल कैपिटल है, श्री चैतन्य देव स्वामी विवेकानंद की भूमि है, इसको ये एजुकेशन हब है, ये इंडस्ट्री का हब है, यह प्रकृति मां, भगवान ने सब दिया है, इतना रॉ मटेरियल, इतना अच्छा गंगा माता, इतना बड़ा बे ऑफ बंगाल समुंदर, इतना खूबसूरत टाइगर हिल, इतना अच्छा हमारी फॉरेस्ट, इतना बड़ा बड़ा राजमार्ग, इतना अच्छा रेलवे कनेक्टिविटी, इतना बड़ा स्टेट, इट्स ए गेटवे ऑफ एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न, नॉट ओनली द नॉर्थ ईस्टर्न, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द नेबरिंग कंट्री, सब इस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। इतना अच्छा अच्छा हमारी सी पोर्ट है, रिवर पोर्ट है, इतना मौका है, इतना हाई स्किल पीपल है, इतना ह्यूमन रिसोर्स में क्वालिटी है, जितना भी नोबेल मिला है देख लीजिए सब बंगाल से आता है। इसको खड़ा करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आवाज

0: विकास भी होगा, विरासत भी होगा। यही अगले दिन बंगाल में लेकर जाना चाहिए। स्पीकर साहब मुझे एडवाइस किया है, वो बहुत अनुभवी भी नेता है, मेरा बड़ा भाई है, मुझे गाइड करता है। आने वाला दिन में बंगाल में डेमोक्रेसी को अच्छा मजबूत करना, पार्लियामेंटरी सिस्टम को अच्छा करना और हमारी एमएलए लोग को बहुत पॉपुलर बनाना, सरकार का साथ जोड़ के काम करना, ये सब में हम लोग काम करेगा और हमारी असेंबली में बहुत सारा काम करना है। हम लोग आने का बाद में स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट किया था, लाइव कर दीजिए ना, जिसको जो बोलना है जनता को देखने दीजिए ना, ये कौन क्या करता है, हम लोग क्या कर रहा है देखने दीजिए। लाइव चालू हुआ, लाइव नहीं था, ये तो शर्म का बात है। पूरा आपका लोकसभा सेक्रेटेरिएट यहां है, दूसरा बड़ा बड़ा प्रदेश का स्पीकर साहब लोग है, यहां अभी भी वोटिंग होता है पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मीटिंग आर नॉट फंक्शनिंग, ये अच्छा बात नहीं है। सब लोग सुन रहा है, लाइव कर रहा है, इसको सुधारना चाहिए। असेंबली इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिस्टम, किरण रिजिजू का लीडरशिप में जितना काम भारत के पार्लियामेंट में मोदी जी का मार्गदर्शन में हो रहा है, ओम बिरला जी का डायरेक्शन में हो रहा है, एक कुछ काम बंगाल में भी होना चाहिए। इसलिए बंगाल असेंबली, उनका लाइब्रेरी, उनका म्यूजियम, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका सब सब जनता ओरिएंटेड होना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक संविधान दिया है जो हमारी फाइनल वर्ड है, उसमें तीन लाइन है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, नॉट फॉर द पार्टी, नॉट बाय द पार्टी, ऑफ द पार्टी। एक साथ काम करूंगा इस ओरिएंटेशन कैंप में। इतना जल्दी में स्पीकर साहब और उनकी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अरेंजमेंट किया, कुछ भूल होगा तो थोड़ा आप लोग कंसीडर कर देना, ये पहली बार है। आने वाला दिन में बंगाल फिर एक बार देश में लीड करेगा, इस उम्मीद का साथ मैं मेरा बात खत्म करता हूं। वंदे मातरम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए हम अत्यंत आभारी हैं। अब हम उनसे संबोधन के लिए विनम्र निवेदन करते हैं।

आज के इस प्रबोधन कार्यक्रम में इस ऐतिहासिक और विरासत धरती पर आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिला। मैं आप सभी विधायकों को, जिन्होंने जनता ने बड़ी विश्वास भरोसे के साथ आप चुनकर भेजा है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, पश्चिम बंगाल के यशस्वी लोकप्रिय और जो पश्चिम बंगाल की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नई आधुनिकता की ओर बंगाल को बनाने का जिनका संकल्प है, शुभेंद्र अधिकारी जी, पार्लियामेंट में हमारे साथी संसदीय कार्य अल्पसंख्यक मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू।

जी, इस विधानसभा के अध्यक्ष जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं श्री रविंदर बसु जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री ऋतवत बनर्जी जी और संसदीय कार्य मंत्री श्री उमेश राय जी, यहां पर इस कार्यक्रम में पधारे विधानसभा के विभिन्न अध्यक्षगण, संसद सदस्यगण और इस कार्यक्रम में आए पश्चिम बंगाल के सभी मंत्रियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको ऐसे राज्य का प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिला है जिसने भारत को विचार दिया, दिशा दी, प्रेरणा दी। यह आप सबके लिए सौभाग्य का विषय है। पश्चिम बंगाल की धरती साहित्य, कला, संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना, उद्योग, शिक्षा, बौद्धिकता और आजादी के आंदोलन की दिशा देने वाली ये धरती है। और इस धरती पर ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के साथ भारत की आजादी को स्वर दिया, भारत की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाया, समाज सुधार का आलोक जगाया और आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए वंदे मातरम के गीत के साथ हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। उस वंदे मातरम को गीत रखने वाले भी यहां के राजा राममोहन राय जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, बंकिम चंद चटर्जी हो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, इन सबका अलग अलग कालखंड में योगदान रहा। आज भी राष्ट्र उनको याद करता है, हम सबको उनसे प्रेरणा मिली। माननीय सदस्यगणों, आपको जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है और एक विधायक से बहुत अपेक्षाएं होती है, आकांक्षाएं होती है। जो उनकी चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उसको समाधान निकालने की जिम्मेदारी आप। और मुझे खुशी है कि इस विधानसभा में 181 माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए, जो अपने आप में एक इतिहास है। यहां पर 194 विधायक 25 वर्ष से 55 वर्ष की उम्र तक है, युवाओं महिलाओं का नेतृत्व वाली ये विधानसभा निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका कालखंड लोग याद रखे। इसलिए हमें संसदीय परंपराओं, संसदीय प्रपातियों और संसदीय गरिमा को ऊंचा उठाते हुए राज्य के विकास के लिए योगदान देना है। और इसलिए एक विधायक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? आपने जनता को चुनकर भेजा है, जहां आपकी एक अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी है, वहां इस राज्य के विकास की जिम्मेदारी भी आपकी है। इस राज्य की नीतियां, कानून, राज्य के लोगों की आकांक्षाएं, ये भी एक विधायक की जिम्मेदारी होती है। इसलिए आप पूरे राज्य की सामूहिक आकांक्षाओं के प्रतिनिधि भी हैं। आपके हर विचार, हर तर्क, संवाद हम केंद्र में जन कल्याण को रखें, लोगों की आपदा चुनौतियों के समाधान का रास्ता ढूंढें। हमारी चर्चा संवाद के अंदर जहां समस्या भी हो, कठिनाई भी हो, चुनौतियों की चर्चा भी हो, लेकिन उसके समाधान के रास्ते भी हो, अच्छी विधानसभा की

बस वही होती है जहां आप आलोचना भी करें या कठिनाई भी रखें, लेकिन उसके साथ का समाधान क्या है उस समाधान पर भी अपने विचार रखें। और इसलिए आपको विधानसभाओं की श्रेष्ठ परंपराओं को, परपाटियों को आपको समझने की आवश्यकता होगी। आपको यहां पुरानी डिबेट, यहां बनने वाले कानूनों, यहां बनने वाले बड़े मुद्दों पर जो चर्चा हुई है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इस विधानसभा की बहुत ऐतिहासिक रही है। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि विधानसभा ही राज्य देश के निर्णय करती है, और इसलिए बंगाल कहां जाए यह भी राज्य की विधानसभाओं में निर्णय हुआ है। इसलिए राज्य विधानसभा राज्य की जनता के कल्याण के लिए नीतियां कानून बनाने के साथ उनके समाधान, उनके बेहतर जीवन के लिए भी काम करती है। इसलिए आप जितनी विधानसभा के अंदर तर्कपूर्ण तरीके से तथ्यों के आधार पर अच्छी चर्चा संवाद करेंगे उतना ही आप अच्छा नेतृत्व दे पाएंगे, और ये विधानसभा के इस नेतृत्व से ही राज्य का नेतृत्व निकलता है, देश का नेतृत्व निकलता है। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है हमेशा जीवन में सीखते रहें, नए अनुभव लेते रहें, अच्छे श्रेष्ठ विचारों को साझा करते रहें, जहां भी जिस समय भी जिस वक्त भी मिले जीवन में सीखने की आकांक्षा होनी चाहिए, कुछ नए करने की आकांक्षा होनी चाहिए। मेरी विधानसभा के अंदर, मेरे राज्य के अंदर, मैं राज्य विधानसभा के विधायक के रूप के अंदर क्या नया बदलाव ला सकता हूं, इसकी चर्चा हमें सदन में करने की आवश्यकता है। और इसीलिए यह समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है, और एआई टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है। इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की विधानसभाओं की, पार्लियामेंट की, राज्यसभा की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी। और मेरा आपसे आग्रह, जितनी देर आप विधानसभा बैठेंगे आपको बोलने का अवसर मिले ना मिले, लेकिन नए विधायक हो, पुराने विधायक हो, जितनी देर संभव हो विधानसभा में बैठना, लोगों के विचारों को सुनना, उनके तर्कों को सुनना, उनके तथ्यों को सुनना, जितना आप विधानसभा में बैठेंगे उतने ही आपको नए अनुभव मिलेंगे। इससे मेरा आपसे आग्रह पूर्वक है कि नए विधान सदस्य को लंबे समय तक विधानसभा बैठना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की धरती में एक नई ऊर्जा है। यह धरती हमेशा विचारों की धरती रही है, यह धरती हमेशा नवाचारों की धरती रही है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है, इस धरती की विरासत को वापस लौटाना है, इस धरती की आध्यात्मिक चेतना, इस धरती की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा, इस धरती पर जो विद्वान हुए जिन्होंने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर देश की संस्कृति विचारों को दुनिया में पहुंचाने का काम किया, उनके विचारों के मंथन व विचार, और यह धरती हमेशा उद्योग, शिक्षा, कई तरह की विरासत है इसकी, इस विरासत को पुनर्जीवित करना चाहिए। भारत बंगाल की ओर देख रहा है,

0: और जब बंगाल की ओर देख रहा है तो आप सबकी ओर देख रहा है। मुख्यमंत्री जी का एक विजन, एक सोच है, दूरदृष्टि है कि हम लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से, लोकतंत्र की संवाद से, डेमोक्रेसी को मजबूत करते हुए हमारी विरासत को वापस लाएंगे, जहां पर हर बड़े निर्णय राज्य की विधानसभा में हो। प्रदेश देश विधानसभाओं की चर्चाओं को देखे, मैं यहां के विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने विधानसभा की कार्रवाई को लाइव किया ताकि देश देख सके, प्रदेश देख सके कि हम जो निर्णय कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वो देश और प्रदेश के हित में है। और इसलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, ये समय आपके लिए सबसे ऐतिहासिक समय है, ये समय सबसे अच्छा समय है, क्योंकि जो आप आज जो फैसले करके जाएंगे, जो निर्णय करके जाएंगे, ये वर्तमान के लिए भी होंगे, भावी पीढ़ी के लिए होंगे। और इसीलिए इस भावी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मुझे आशा है कि दो दिन तक आपके इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप चर्चा करेंगे, अपने अपने तर्क रखेंगे, कुछ सवाल जिज्ञासा होगे तो जिज्ञासा का सवाल भी पूछेंगे, और तर्कपूर्ण तरीके से कैसे चर्चा की जा सकती है, संवाद की जा सकती है, इसके लिए बेस्ट स्पीकर यहां पर आए हैं, और मुझे आशा है आने वाले समय में हम बंगाल के आम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलना, यही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य उस गरीब व्यक्ति की आवाज को बनना। आपको इसलिए चुनकर भेजा है कि आप उनकी आवाज हो, उनकी कठिनाइयां, उनकी चुनौतियां, उनकी आकांक्षाओं, उनके विचारों को आप विधानसभा के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। सहमति असहमति लोकतंत्र में हो सकती है, कहीं आपको भी अपने विचार व्यक्त करने समय कई तार्किक चीजें कहने पड़े, लेकिन निर्वाक रूप से सदन में अपनी बात को कहना चाहिए। और मुझे आशा है आने वाला समय इतिहास आपको याद रखेगा, आपकी को जनता ने बहुत अपेक्षाओं से, बहुत विश्वास से चुनकर भेजा है, और इसलिए हमें लोकतंत्र को, लोकतंत्र की परंपराओं को, लोकतंत्र की शेष संवाद को, चर्चाओं को और श्रेष्ठ बनाना है। हमें इसी विधानसभा से अपने तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण, विवेकपूर्ण चर्चा कर कानून भी बनाना है, नीतियां भी बनाना है, और नीतियां कानून के साथ ब्यूरोक्रेसी के कामों की समीक्षा भी करना है, क्योंकि जनता का राज इसलिए होता है जहां जनता की सुनी जाती है। और हमारे किरण रिजिजू जी ने बहुत बताया कि यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसदों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और यही भरोसा है। अब हमारा जीवन देश राष्ट्र के लिए, हमारा जीवन हमारी क्षेत्र की जनता के लिए, हमारा जीवन प्रदेश के लिए, और इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जीवन अब जन सेवा, जन कल्याण के लिए हम बंगाल की जनता को जो अपेक्षाएं हैं, उन आकांक्षाएं, उस अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, और बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, और लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।
1: धन्यवाद श्री ओम बिरला जी। परिशेषे धन्यवाद ज्ञापन करबेन परिषदीय विषयक राष्ट्रमंत्री

0: with more than 150 millimetres of rainfall recorded in parts of the city during the last 24 hours. The Brihanmumbai Municipal Corporation has kept its emergency teams on alert.
1: With continuous downpour in the metro city, waterlogging was reported from low-lying areas. Central and Harbour Railway services were delayed by 10 to 15 minutes. Western Railway services remained normal. Heavy rain also continued in the Konkan region. In Ratnagiri district, an average of 69 mm rainfall was recorded during the last 24 hours. Water levels in major rivers have risen and the Jagburi River in Kher Taluka in Ratnagiri district has reached 4.9 meters, close to its warning level of 5 meters. Authorities are monitoring the situation. Meanwhile, as a precaution during the active monsoon season, the 5 battalion of the National Disaster Response Force has pre-positioned rescue teams across vulnerable districts in Maharashtra and Goa. Teams equipped with flood rescue equipment and trained personnel have been deployed to ensure a quick response to any rain-related emergencies. With Nivedita's report, Anuja Kumar, AIR News.
0: In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver, Canada. Switzerland will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue, aiming to reach the quarterfinals for the fourth time in their history. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of the country, extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Vikasit Bharat 2047, calls for strengthening India-France strategic partnership. Two-day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal. India steps up humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Nearly 2,600 people died, thousands still missing. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh till tomorrow. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
3: बोलो बाबा अमरनाथ की जय।
4: बाबा अमरनाथ बम बम।
5: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
6: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
7: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
5: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
3: बाबा अमरनाथ की जय।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री

0: श्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमेरिकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
3: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है।

0: इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: को समाचार पछि पुनः स्वागत जनाउँदछौं श्रोतालाई आकाशवाणीको नेपाली प्रसारण सेवामा।

0: फिल्म संगीतको प्रसारणपछि अब सुन्नुहोस् समाचार।
1: नमस्कार, यो आकाशवाणी हो, दिव्यतम अधिकारीबाट समाचार सुन्नुहोस्।

0: समय अपराह चार बजना लागिरहेछ र श्रोताले सुन्दै हुनुहुन्छ आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्र एफएम 103.5 मेगाहर्ज र अबको अघिल्लो प्रस्तुति हिन्दीमा वार्ता।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं आपकी संचालिका सुरक्षित तामंग की ओर से स्वागत है हमारे आज की हिंदी वार्ता में। दोस्तों, हमारे आज की वार्ता का विषय है प्रधानमंत्री योजनाओं से आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, और आज हमारी इस वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं पंकज कुमार। तो आइए दोस्तों, इस वार्ता को सुना जाए।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी करशोंग और मैं हूं आपका अपना पंकज कुमार। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम बात करेंगे पिछले एक दशक में भारत में शुरू हुई उन जन कल्याणकारी योजनाओं की जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। हमारा विषय है 2014 के बाद भारत में शुरू हुई प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, बदलता भारत बदलती सोच। श्रोताओं, जब भी किसी देश के विकास की बात होती है तो अक्सर हमारी नजर बड़ी बड़ी इमारतों, चौड़ी सड़कों, तेज रफ्तार रेलगाड़ियों और बढ़ती अर्थव्यवस्था पर जाती है। लेकिन क्या विकास का अर्थ केवल यही है? जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, देश के किसी छोटे से गांव में रहने वाला एक किसान जिसकी पूरी कमाई मौसम पर निर्भर है, एक ऐसी महिला जिसने जीवन भर लकड़ी और गोबर के चूल्हे पर खाना बनाया, एक ऐसा युवा जिसके पास हुनर तो है लेकिन अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी नहीं, एक ऐसा परिवार जिसकी वर्षों की बचत घर के किसी पुराने संदूक में रखी रहती है क्योंकि उनका कभी बैंक में खाता ही नहीं खुल पाया, और एक ऐसा गरीब परिवार जिसके लिए घर का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो इलाज से पहले पैसे की चिंता सताने लगती है। इन कहानियों में पात्र अलग अलग है लेकिन समस्या एक ही है, जीवन की बुनियादी सुविधाओं तक समान पहुँच। यही वह चुनौती थी जिससे भारत वर्षों तक जूझता रहा। स्वतंत्रता के बाद देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक योजनाएं शुरू हुई। इन योजनाओं ने समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने का प्रयास भी किया लेकिन समय समय पर एक प्रश्न लगातार उठता रहा, क्या सरकारी योजना का लाभ वास्तव में उस व्यक्ति तक पहुँच रहा है जिसके लिए वह बनाई गई है? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का वह प्रसिद्ध कथन आज भी अक्सर याद किया जाता है कि सरकार द्वारा भेजे गए 1 रुपए में से केवल 15 पैसे ही अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाते हैं। यह उस दौर की प्रशासनिक चुनौतियों की ओर संकेत करता था जहां लंबी प्रक्रियाएं, बिचौलियों की भूमिका, पहचान की समस्याएं और पारदर्शिता की कमी योजनाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित करती थी। श्रोताओं, वर्ष 2014 में देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। आम चुनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनी। नई सरकार के सामने अनेक चुनौतियां थी, गरीबी, बेरोजगारी, वित्तीय समावेशन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पहुंच और आधारभूत संरचना जैसे अनेक क्षेत्र तत्काल ध्यान की अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन इस बार एक अलग दृष्टिकोण सामने आया। सोच यह थी कि केवल नई योजनाएं शुरू करना पर्याप्त नहीं होगा, पहले उस व्यवस्था को मजबूत करना होगा जिसके माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे नागरिक तक पहुंच सके। यहीं से शुरू होती है जैम ट्रिनिटी की अवधारणा, जन धन, आधार और मोबाइल। पहली नजर में ये तीनों अलग अलग बातें लगती हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़ा गया तो सरकारी सेवा वितरण की पूरी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा। कल्पना कीजिए, यदि किसी नागरिक का बैंक खाता है, उसकी पहचान आधार से प्रमाणित है और उसके पास मोबाइल फोन है तो सरकार बिना किसी बिचौलिए के सीधे उसी व्यक्ति तक आर्थिक सहायता पहुंचा सकती है। यही सोच आगे चलकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात DBT की मजबूत नींव बनी। आज छात्रवृत्ति हो, LPG सब्सिडी हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या फिर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अनेक योजनाएं, करोड़ों लाभार्थियों तक सहायता सीधे

उनके बैंक खातों में पहुंच रही है। लेकिन श्रोताओं, यह परिवर्तन एक दिन में नहीं आया, इसके पीछे कई योजनाएं थी और उन योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई यह योजना केवल बैंक खाते खोलने का अभियान नहीं थी, यह वास्तव में वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय अभियान था। जरा सोचिए, आज शहरों में बैंक खाता होना एक सामान्य बात लगती है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब देश के लाखों परिवारों के लिए बैंक केवल शहरों की इमारतों तक सीमित थे। दैनिक मजदूरी नकद मिलती थी, बचत घर में रखी जाती थी और यदि सरकार कोई आर्थिक सहायता भेजना भी चाहती तो वह लाभार्थी तक समय पर पहुंचेगी या नहीं, इसकी कोई निश्चितता ही नहीं होती थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया। इस योजना के अंतर्गत बिना न्यूनतम राशि के बैंक खाता खोलने की सुविधा दी गई। इसके साथ रुपे डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा तथा बाद में ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गई। धीरे धीरे यही खाते अनेक सरकारी योजनाओं का आधार बनते चले गए। आज देश में 55 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं। कोरोना महामारी के दौरान जब देशव्यापी लॉकडाउन लागू हुआ तब इन्हीं खातों के माध्यम से करोड़ों महिलाओं और गरीब परिवारों तक आर्थिक सहायता सीधे पहुंची। इससे यह स्पष्ट हुआ कि संकट की घड़ी में मजबूत बैंकिंग व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि किसी भी बड़ी योजना की तरह इस योजना को लेकर भी समय समय पर प्रश्न उठे। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि शुरुआती वर्षों में अनेक खाते निष्क्रिय रहे और लोगों को बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता थी। इसके बाद वित्तीय साक्षरता, डिजिटल भुगतान और विभिन्न सरकारी योजनाओं को जनधन खातों से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया। श्रोताओं, यदि जनधन योजना ने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया तो उसी वर्ष शुरू हुई एक दूसरी योजना ने भारत के सामाजिक जीवन को एक नए आंदोलन से जोड़ दिया। उस योजना का नाम था स्वच्छ भारत मिशन। 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी की जयंती, यही वह दिन था जब सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। लेकिन श्रोताओं, यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, यह एक ऐसी सोच को जन आंदोलन बनाने का प्रयास था जिसके बारे में महात्मा गांधी स्वयं कहा करते थे कि स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। एक दृश्य अपने मन में लाइए, देश के किसी छोटे से गाँव की सुबह, घर की महिलाएं और बुजुर्ग अंधेरा होने का इंतजार करते हैं क्योंकि खुले में शौच के लिए दिन का उजाला सुरक्षित नहीं माना जाता। बरसात के दिनों में कीचड़, गर्मी में बदबू और सबसे बड़ी चिंता बीमारियां। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ वर्षों से यह बताते रहे कि स्वच्छता केवल सफाई का विषय नहीं है, यह सीधे सीधे पोषण, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और महिलाओं की गरिमा से जुड़ा हुआ विषय है। यही कारण था कि स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य केवल शौचालय बनाना नहीं था, इसका उद्देश्य था खुले में शौच की समस्या को कम करना, ठोस और तरल कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाना और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों की सोच में बदलाव लाना। सरकार के अनुसार इस अभियान के अंतर्गत देश भर में 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। अनेक राज्यों और जिलों ने स्वयं को ओपन डिफेक्शन फ्री अर्थात खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। लेकिन श्रोताओं, यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी सामने आया, क्या केवल शौचालय बना देने से समस्या समाप्त हो जाती है? विशेषज्ञों का उत्तर है नहीं। यदि शौचालय है लेकिन उसमें पानी नहीं है, यदि उसका रखरखाव नहीं हो रहा, यदि लोग पुरानी आदतों के कारण उसका उपयोग नहीं कर रहे तो केवल निर्माण पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इसीलिए इस अभियान में व्यवहार परिवर्तन पर विशेष बल दिया गया। स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता के बारे में पढ़ाया गया, ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया, स्वयं सहायता समूहों ने जागरूकता अभियान चलाए, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया। स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हुई। हालांकि कुछ स्वतंत्र अध्ययनों में यह भी कहा गया कि कुछ क्षेत्रों में शौचालयों के उपयोग, जल उपलब्धता और रखरखाव को लेकर अभी भी चुनौतियां मौजूद हैं। यानी यह स्पष्ट है कि किसी भी राष्ट्रीय अभियान की वास्तविक सफलता केवल निर्माण से नहीं बल्कि उसके निरंतर उपयोग और जन भागीदारी से तय होती है। श्रोताओं, यदि स्वच्छ भारत मिशन का संबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता से था तो वर्ष 2015 में शुरू हुई एक और महत्वपूर्ण पहल का संबंध था समाज की सोच बदलने से। हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। जरा सोचिए, किसी परिवार में बेटी के जन्म पर खुशी कम और चिंता ज्यादा हो, यदि समाज में बेटे और बेटी के बीच अंतर किया जाए, यदि किसी लड़की की पढ़ाई बीच में ही रोक दी जाए, तो क्या केवल आर्थिक विकास से समाज आगे बढ़ सकता है?
शायद नहीं। इसी सोच को बदलने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई। उस समय देश के अनेक राज्यों में बाल लिंगानुपात चिंता का विषय बना हुआ था। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, शिक्षा में असमानता और बेटियों के प्रति सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याएं अनेक क्षेत्रों में मौजूद थी। इस अभियान के 3 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए। पहला, बेटी के जन्म को सुरक्षित कराना। दूसरा, उसे शिक्षा से जोड़ना। और तीसरा, समाज में बेटियों के प्रति सम्मान और समान अवसर की भावना विकसित करना। श्रोताओं, यदि हम पिछले 1 दशक पर नजर डालें तो अनेक राज्यों में बालिकाओं के स्कूल नामांकन में वृद्धि देखने को मिली है। कई जिलों में लिंगानुपात में भी सुधार दर्ज किया गया, लेकिन किसी भी सामाजिक अभियान की तरह इस योजना को लेकर भी चर्चा हुई। कुछ स्वतंत्र रिपोर्टों में कहा गया कि शुरुआती वर्षों में बजट का बड़ा हिस्सा प्रचार प्रसार पर खर्च हुआ, जबकि कई विशेषज्ञों का मत था कि जमीनी स्तर पर शिक्षा, पोषण और सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों पर अधिक निवेश की आवश्यकता है। सरकार ने समय समय पर राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने तथा अभियान को और प्रभावी बनाने के प्रयास भी किए। लेकिन श्रोताओं, यदि हम इस योजना को केवल सरकारी कार्यक्रम मानकर देखें तो शायद इसकी पूरी भावना को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक योजना नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है। एक ऐसा संदेश जो कहता है कि यदि बेटी सुरक्षित होगी तो वह पढ़ेगी, यदि वह पढ़ेगी तो आत्मनिर्भर बनेगी, और यदि वह आत्मनिर्भर बनेगी तो पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। यानी एक बेटी का सशक्त होना केवल एक व्यक्ति का सशक्त होना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। श्रोताओं, यदि हम अभी तक की चर्चा पर एक नजर डालें तो एक रोचक बात सामने आती है। जनधन योजना ने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया। स्वच्छ भारत मिशन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को राष्ट्रीय आंदोलन बनाया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने सामाजिक सोच को बदलने का प्रयास किया। यानी 3 योजनाएं, 3 अलग अलग क्षेत्र, लेकिन लक्ष्य एक, समावेशी विकास। इसी अवधि में सरकार ने 3 और बड़े राष्ट्रीय अभियान शुरू किए, जिनका प्रभाव केवल सरकारी कार्यालयों तक सीमित नहीं रहा बल्कि उद्योग, शिक्षा, तकनीक और युवाओं के भविष्य तक पहुंचा। ये अभियान थे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया। लेकिन इन योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। वहीं हम यह भी समझेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और जल जीवन मिशन ने करोड़ों भारतीयों के दैनिक जीवन को प्रभावित किया। पहले भाग में हमने यह समझने का प्रयास किया कि पिछले 1 दशक में भारत में कल्याणकारी योजनाओं की सोच किस प्रकार बदली। हमने वित्तीय समावेशन, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की। लेकिन श्रोताओं, यदि किसी परिवार की आय सीमित हो, बैंक खाते में पैसे तो हों लेकिन कमाने का स्थायी साधन न हो, तो आर्थिक सशक्तिकरण अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि वर्ष 2015 के बाद सरकार ने स्वरोजगार और छोटे उद्यमों को विशेष प्राथमिकता देना शुरू किया, और इसी सोच से जन्म हुआ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। मान लीजिए एक युवक है, उसे मोबाइल रिपेयरिंग का अच्छा ज्ञान है, एक महिला है जो वर्षों से सिलाई का काम करती है, एक कुम्हार है जिसकी पीढ़ियां मिट्टी के बर्तन बनाती रही है, एक चाय की छोटी सी दुकान चलाने वाला व्यक्ति जो अपने व्यवसाय को थोड़ा और बड़ा करना चाहता है। इन सब के पास हुनर है, मेहनत है, लेकिन पूंजी नहीं। भारत में छोटे व्यापारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या हमेशा यही रही है कि बैंक से ऋण लेना आसान नहीं था। बैंक गारंटी मांगते थे, जमीन या संपत्ति के दस्तावेज मांगते थे, और कई बार छोटी राशि के लिए भी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई। मुद्रा का पूरा नाम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इस योजना का उद्देश्य था छोटे व्यवसायों को बिना बड़ी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत ऋण को 3 श्रेणियों में बांटा गया, शिशु, किशोर और तरुण। अर्थात व्यवसाय जितना बड़ा उसके अनुसार ऋण की सीमा भी अलग। सरकार के अनुसार इस योजना के माध्यम से करोड़ों ऋण स्वीकृत किए गए। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की भी रही। सिलाई केंद्र, डेयरी, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, दुकानें, ई रिक्शा, खाद्य प्रसंस्करण, ऐसे अनेक छोटे व्यवसायों को इस योजना में सहायता मिली। लेकिन श्रोताओं, यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठता है, क्या केवल ऋण मिल जाने से व्यवसाय सफल हो जाता है? उत्तर है नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऋण के साथ साथ बाजार की जानकारी, व्यवसाय चलाने का प्रशिक्षण, डिजिटल भुगतान की समझ और उत्पाद बेचने के अवसर भी उतने ही आवश्यक हैं।
यानी स्वरोजगार केवल बैंक ऋण से नहीं बल्कि कौशल, बाजार

और निरंतर मार्गदर्शन से मजबूत होता है। श्रोताओं, यदि मुद्रा योजना ने आय बढ़ाने का प्रयास किया तो वर्ष 2016 में शुरू हुई एक दूसरी योजना ने करोड़ों महिलाओं के दैनिक जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। भारत के किसी ग्रामीण घर की सुबह की तस्वीर अपने मन में लाइए। सुबह के 5 बजे हैं। एक ग्रामीण महिला जंगल की ओर जा रही है। उसे खाना बनाने से पहले लकड़ी इकट्ठा करनी है। बरसात हो या तेज गर्मी, यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। घर लौटने के बाद मिट्टी के चूल्हे में आग जलती है, पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। धीरे धीरे यही धुआं उसकी आंखों, फेफड़ों और पूरे स्वास्थ्य पर असर डालने लगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई बार यह कहा है कि घरों के भीतर होने वाला धुआं भी एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है, विशेषकर महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए। इसी चुनौती को देखते हुए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। सरकार के अनुसार 10 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। लेकिन श्रोताओं, किसी भी योजना की तरह यहां भी एक नया प्रश्न सामने आया। गैस कनेक्शन तो मिल गया, लेकिन क्या हर गरीब परिवार नियमित रूप से सिलेंडर भरवा सकता है? कुछ स्वतंत्र अध्ययनों में यह पाया गया कि कई परिवार शुरुआती सिलेंडर के बाद दोबारा रिफिल कराने में आर्थिक कठिनाई महसूस करते थे। इसी कारण समय समय पर सब्सिडी और सहायता राशि को लेकर भी नीतिगत बदलाव किए गए। यानी किसी योजना की सफलता केवल उसके शुभारंभ में नहीं बल्कि उसके लगातार उपयोग में छिपी होती है। श्रोताओं, अब एक क्षण के लिए उस परिवार की कल्पना कीजिए जिसने पूरी जिंदगी मिट्टी के कच्चे घर में गुजारी हो। बरसात आते ही छत टपकने लगे, दीवारें भीग जाएं और हर साल यही चिंता बनी रहे कि अगली बारिश में घर टिक पाएगा या नहीं। ऐसे करोड़ों परिवारों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, घर सुरक्षा देता है, आत्मविश्वास देता है और सबसे बड़ी बात, एक सम्मानजनक जीवन का एहसास कराता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य था हर पात्र परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग। इस योजना की एक विशेष बात यह भी रही कि अनेक घर महिलाओं या पति पत्नी के संयुक्त नाम पर स्वीकृत किए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और सामाजिक सुरक्षा दोनों को बल मिला। हालांकि भूमि उपलब्धता, निर्माण की गुणवत्ता और कुछ राज्यों में परियोजनाओं की गति जैसे विषयों पर समय समय में चर्चा होती रही, लेकिन इस योजना ने एक बात अवश्य स्थापित, आवास केवल भवन निर्माण नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का आधार भी है। श्रोताओं, यदि किसी परिवार के पास अपना घर हो, रसोई में धुएं की जगह स्वच्छ ईंधन हो, रोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध हो, तो निश्चित रूप से जीवन पहले से बेहतर हो सकता है। लेकिन एक ऐसी समस्या भी है जो वर्षों तक लाखों भारतीय परिवारों के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी रही। वह समस्या थी बीमारी। अक्सर कहा जाता है कि गरीबी केवल कम आय के कारण नहीं बढ़ती, कई बार एक गंभीर बीमारी भी पूरे परिवार को आर्थिक रूप से तोड़ देती है। सोचिए, एक मजदूर परिवार दिन भर मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जुटाता है, अचानक परिवार के किसी सदस्य को हृदय रोग हो जाए, कैंसर का इलाज कराना पड़े या कोई बड़ा ऑपरेशन आवश्यक हो जाए, तो सबसे पहले कौन सा प्रश्न सामने आता है? इलाज कहाँ होगा? और उससे भी बड़ा प्रश्न, इलाज का खर्च कौन उठाएगा? भारत में वर्षों तक लाखों परिवारों की जमा पूंजी केवल इलाज में खर्च हो जाती थी। कई परिवार कर्ज लेने को मजबूर हो जाते थे। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना का उद्देश्य केवल बीमा देना नहीं था, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारी के समय उपचार के लिए पैसों की चिंता कम करनी पड़े। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया, ताकि केवल बीमारी का इलाज ही नहीं बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत बनाया जा सके। श्रोताओं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी देश की चिकित्सा व्यवस्था केवल बड़े अस्पतालों से मजबूत नहीं होती। यदि गांव के स्वास्थ्य केंद्र मजबूत होंगे, समय पर जांच होगी, रोगों की पहचान प्रारंभिक अवस्था में होगी, तो गंभीर बीमारियों का बोझ भी कम होगा। इसी सोच के साथ आयुष्मान भारत को केवल बीमा योजना नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रयास के रूप में भी देखा गया। हालांकि कुछ राज्यों ने अपनी अलग स्वास्थ्य बीमा योजनाएं जारी रखी। कुछ विशेषज्ञों ने अस्पतालों की उपलब्धता, डॉक्टरों की संख्या और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को लेकर भी सवाल उठाए। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि करोड़ों गरीब परिवारों के लिए

एक गंभीर बीमारी के समय यह योजना एक महत्वपूर्ण सहारा बनकर सामने आई। श्रोताओं, यदि स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है तो भोजन उसकी सबसे बुनियादी शर्त और भोजन की शुरुआत होती है किसान से। भारत आज भी कृषि प्रधान देश माना जाता है। देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है, लेकिन खेती प्रकृति पर निर्भर करती है। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी ओलावृष्टि, तो कभी बाजार में कीमतों का उतार चढ़ाव। इन सब के बीच किसान को हर मौसम में बीज भी खरीदना होता है, खाद भी, कीटनाशक भी, और खेती के दूसरे खर्च भी उठाने पड़ते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए वर्ष 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना का उद्देश्य था पात्र किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। सरकार द्वारा निर्धारित राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाने लगी। यह भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना। श्रोताओं, यदि कोई किसान समय पर बीज खरीद पाए, खाद खरीद पाए, तो उसकी खेती पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी सोच के साथ इस योजना को छोटे और सीमांत किसानों के लिए सहायक व्यवस्था के रूप में देखा गया, लेकिन यहाँ भी चुनौतियाँ सामने आई। कुछ राज्यों में भूमि अभिलेखों की त्रुटियाँ, पात्रता संबंधी विवाद और अपात्र लोगों तक लाभ पहुँचाने जैसी शिकायतें भी सामने आई। समय समय पर इन त्रुटियों को सुधारने के प्रयास भी किए गए। यानी किसी भी प्रत्यक्ष सहायता योजना की सफलता सही लाभार्थी की पहचान पर निर्भर करती है। श्रोताओं, हो सकता है आपने भी अपने आसपास ऐसा दृश्य देखा हो। सुबह के 5 बजे हैं, एक किशोरी अपने सिर पर खाली बाल्टी रखकर घर से निकलती है, उसके साथ उसकी माँ भी है। दोनों का आधा किलोमीटर, कहीं 1 किलोमीटर, तो कहीं उससे भी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है सिर्फ पीने का पानी लाने के लिए। गर्मी हो, बरसात हो या सर्दी, यह रोज की दिनचर्या है। ऐसी परिस्थितियां केवल समय ही नहीं लेती, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के श्रम पर भी गहरा प्रभाव डालती है। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया जल जीवन मिशन। इस मिशन का उद्देश्य था प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल पहुंचाना। यह योजना केवल पानी उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं थी, इसका संबंध महिलाओं के जीवन को आसान बनाने से भी था, बच्चियों की शिक्षा से भी था और जल जनित बीमारियों को कम करने से भी था। सरकार के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में लाखों ग्रामीण परिवारों तक नल जल कनेक्शन पहुंचाए गए, लेकिन विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती केवल पाइपलाइन बिछाना नहीं होगी, बल्कि पानी के स्रोतों को सुरक्षित रखना भी होगा। यदि वर्षा जल का संरक्षण नहीं होगा, यदि भूजल का स्तर लगातार नीचे जाता रहेगा, तो केवल पाइपलाइन से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं होगा। यानी जल जीवन मिशन केवल एक योजना नहीं, बल्कि जल संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी को भी याद दिलाता है। श्रोताओं, यदि इन सभी चर्चाओं को एक साथ देखें तो एक रोचक चित्र सामने आता है। मुद्रा योजना कहती है रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। उज्ज्वला योजना कहती है महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षित होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना कहती है हर परिवार को सम्मानजनक घर मिलना चाहिए। आयुष्मान भारत कहता है बीमारी आर्थिक विनाश का कारण नहीं बननी चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कहती है किसानों को समय पर आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। और जल जीवन मिशन हमें याद दिलाता है कि विकास की शुरुआत स्वच्छ पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकता से होती है। यानी इन सभी योजनाओं का उद्देश्य अलग अलग अवश्य है, लेकिन मंजिल एक ही है, आम नागरिक के जीवन को अधिक सुरक्षित, अधिक सम्मानजनक और अधिक आत्मनिर्भर बनाना। एक छोटे से संगीत विराम के बाद हम इस विशेष श्रृंखला के अंतिम भाग में चर्चा करेंगे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, पीएम विश्वकर्मा, पीएम सूर्यघर, पीएम गतिशक्ति, विकसित भारत 2047 की परिकल्पना, उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की दिशा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कर्षों। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कर्षों की विशेष प्रस्तुति। 2014 के बाद भारत में शुरू हुई प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं बदलता भारत बदलती सोच। पिछले 2 भागों में हमने उन योजनाओं की चर्चा की जिनका संबंध बैंकिंग, स्वच्छता, महिलाओं के जीवन, स्वास्थ्य, आवास, किसानों और ग्रामीण विकास से था। लेकिन श्रोताओं, 21वीं सदी का भारत केवल कृषि और पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है। आज दुनिया 4थी औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रही है। डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा, स्टार्टअप और नवाचार, ये केवल नए शब्द नहीं है, यही भविष्य की अर्थव्यवस्था की नई पहचान है। इसी सोच के साथ वर्ष 2015 में शुरू किया गया डिजिटल इंडिया अभियान। आइए कुछ वर्षों के लिए अतीत की ओर चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, जाति प्रमाण पत्र लेना हो, बिजली का बिल जमा करना हो या

किसी सरकारी कार्यालय में आवेदन करना हो तो कई बार बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लंबी कतारें, कागजी फाइल और कई दिनों का इंतजार, ये सब आम बात थी। लेकिन धीरे धीरे तकनीक ने इस व्यवस्था को बदलना शुरू किया। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना और तकनीक को आम नागरिक तक पहुँचाना। आज रेल टिकट मोबाइल से बुक हो रही है, बिजली का बिल कुछ सेकंड में जमा हो रहा है, सरकारी दस्तावेज डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रखे जा सकते हैं और यूपीआई ने भुगतान की पूरी संस्कृति को बदल दिया है। आज सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चालक, चाय की दुकान और बड़ी बड़ी कंपनियां सभी एक ही डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। कोविड 19 महामारी के दौरान भी डिजिटल व्यवस्था का महत्व स्पष्ट रूप से सामने आया। ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल बैंकिंग और सरकारी सहायता वितरण, इन सभी में तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन श्रोताओं, हर परिवर्तन अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आता है। आज भी देश के कुछ दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट की गुणवत्ता, डिजिटल साक्षरता और स्मार्टफोन तक पहुंच समान नहीं है। साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी चुनौतियां भी तेजी से बढ़ी हैं। इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल इंडिया का अगला चरण केवल डिजिटल सेवाएं बढ़ाने का नहीं बल्कि डिजिटल सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता बढ़ाने का भी होना चाहिए। श्रोताओं, यदि डिजिटल इंडिया ने तकनीक को बढ़ावा दिया तो सरकार ने युवाओं से एक और महत्वपूर्ण बात कही, सिर्फ नौकरी मत खोजिए, नौकरी देने वाले भी बनिए। इसी सोच के साथ शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया। भारत लंबे समय तक नौकरी चाहने वाले युवाओं का देश माना जाता रहा, लेकिन बदलती अर्थव्यवस्था में नवाचार और उद्यमिता को विकास का नया इंजन माना जाने लगा। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है। फिनटेक, एग्रीटेक, हेल्थ टेक, एयरटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भारतीय युवा नई पहचान बना रहे हैं। लेकिन श्रोताओं, एक स्टार्टअप केवल एक कंपनी नहीं होता, वह एक विचार होता है जो किसी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करता है। किसी ने ऑनलाइन भुगतान आसान बनाया, किसी ने किसानों को बाजार से जोड़ा, किसी ने शिक्षा को मोबाइल तक पहुंचा दिया और किसी ने स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बना दिया। यही नवाचार किसी भी अर्थव्यवस्था की नई शक्ति बनते हैं। हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी समान अवसर और निवेश उपलब्ध कराना भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। श्रोताओं, यदि उद्योग बढ़ेंगे तो कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता भी बढ़ेगी। इसी उद्देश्य से शुरू हुआ स्किल इंडिया मिशन। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, लेकिन केवल युवा आबादी होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि कौशल नहीं होगा तो अवसर भी सीमित रह जाएंगे। स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से लाखों युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण देने का प्रयास किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य, पर्यटन, निर्माण, ऑटोमोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी और अनेक अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी नहीं बल्कि कुशल युवा आबादी होगी। अब एक क्षण के लिए इन सभी योजनाओं को एक साथ रखकर देखिए। इन सभी योजनाओं का क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही दिखाई देता है, जीवन को अधिक सुरक्षित, अधिक सुविधाजनक और अधिक आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी सामने आता है, क्या केवल योजनाएं बना देने से भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? उत्तर है नहीं। योजनाएं दिशा देती हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए सरकार और समाज दोनों को साथ चलना पड़ता है। यदि बैंक खाता खुल जाए लेकिन उसका उपयोग न हो, यदि शौचालय बन जाए लेकिन उसका इस्तेमाल न किया जाए, यदि कौशल प्रशिक्षण मिले लेकिन सीखने की इच्छा न हो, यदि पानी मिले लेकिन उसका संरक्षण न किया जाए, तो सबसे अच्छी योजना भी अपने उद्देश्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सकती। श्रोताओं, आज भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, स्वतंत्रता के 100 वर्ष, एक विकसित भारत का लक्ष्य। लेकिन विकसित भारत केवल ऊंची इमारतों से नहीं बनेगा, वह तब बनेगा जब किसान समृद्ध होगा, जब युवा कुशल होगा, जब महिला सुरक्षित और आत्मनिर्भर होगी, जब तकनीकी गांव तक पहुंचेगी, जब हर घर एक बुनियादी सुविधाएं पहुंचेगी और जब प्रत्येक नागरिक स्वयं को इस विकास यात्रा का सहभागी मानेगा। आज की इस विशेष प्रस्तुति का उद्देश्य किसी योजना का प्रचार करना नहीं था बल्कि यह समझना था कि पिछले एक दशक में भारत में कल्याणकारी योजनाओं की दिशा किस प्रकार बदली, उनकी उपलब्धियां क्या रही, उनके सामने कौन सी चुनौतियां हैं और भविष्य में किन क्षेत्रों में अभी और काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि लोकतंत्र में योजनाएं केवल सरकार की नहीं होती,
वे नागरिकों की भी होती

0: और जब नागरिक जागरूक होकर उनका सही उपयोग करते हैं तभी योजनाएं कागज से निकलकर लोगों के जीवन में बदलाव लाती हैं। इसी आशा के साथ कि भारत की विकास यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, मैं पंकज कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे एक वार्ता जिसका विषय था प्रधानमंत्री योजनाओं से आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है, और इस वार्ता को प्रस्तुत कर रहे थे पंकज कुमार। आशा करते हो आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ आपकी संचालिका सुरक्षिता अमन को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: समय बेला बेलुकीको 5 बज्न लागिरहेछ। अब अघिल्लो क्रममा समय भइरहेछ समाचारको। केही क्षणमै दिल्ली केन्द्रको समाचार रिले गरी यस केन्द्रबाट सुनाउनेछौ, जोडिरहनु होला।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट और स्थिर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना स्थायी रूप से बंद करना होगा। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि तीस्ता परियोजना पर भारत अपने विचार पहले ही बांग्लादेश को बता चुका है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दिए हैं। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक्षा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला कापो वर्दे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: र लसिकी एप्सहरूलाई हटाउन आदेश दिएको छ। यी एपहरू ई रिक्सा लगायतका ई वाहनहरूलाई टाढाबाट बन्द पार्न प्रयोग भइरहेको आरोप लागेपछि यो कार्यवाही गरिएको हो। इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका स्रोतहरूले एप स्टोरहरूबाट यिनीहरूलाई हटाउने आदेश दिएको भनेको छ। मामिलाको अनुसन्धान भइरहेको छ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाले पश्चिम बंगाल विधानसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूका लागि दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन आज कोलकाताको न्यू टाउन कन्वेन्शन सेन्टरमा गर्नुभयो। उद्घाटन समारोह अघि ओम बिरलालाई गार्ड अफ अनर प्रदान गरियो। कार्यक्रममा श्री बिरलाले भन्नुभयो,
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: अभिमुखीकरण कार्यक्रम भोलि पश्चिम बंगाल विधानसभामा समापन हुनेछ, जहाँ पश्चिम बंगालका राज्यपाल आरएन रविले समापन भाषण दिनुहुनेछ। आज बिहान आधिकारिक रूपमा शुरू भएको वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा नुनवान, पहलगाम र बालटाल दुवै मार्गहरूबाट सुचारू रूपमा अगाडि बढ़िरहेको छ। आधार शिविरबाट निस्केका हजारौं यात्रीहरू बम बम भोले र हर हर महादेव बोल्दै कठिन भूभागमा अगाडि बढ़िरहेका छन्। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णनले जम्मू कश्मीरमा वार्षिक अमरनाथ यात्रीहरूलाई शुभकामना दिनुभएको छ भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि वार्षिक अमरनाथ यात्रा गर्ने श्रद्धालुहरूलाई शुभकामना दिनुभएको छ। सूचना प्रसारण मन्त्रालयले प्रसारण श्रोता अनुसन्धान परिषद बीएआरसीलाई टेलिभिजन मूल्याङ्कन नीति 2026 अन्तर्गत यसको इजाजत पत्र नवीकरण नभएसम्म समाचार र गैर समाचार विधा दुवैमा टेलिभिजन मूल्याङ्कनहरू जारी गर्न बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। फिफा विश्वकपमा अस्ट्रेलियाले आज राति अमेरिकाको अर्लिङटनमा राउण्ड अफ 32 खेलमा इजिप्टको सामना गर्नेछ भने अर्जेन्टिनाले मियामी गार्डनमा काबो वर्डेको सामना गर्नेछ भने भोलि बिहान कान्सा सिटी स्टेडियममा कोलम्बियाले घानासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। स्विजरल्याण्ड, स्पेन, पोर्चुगल, बेल्जियम, अमेरिका, इंग्ल्याण्ड, मेक्सिको, फ्रान्स, नर्वे, क्यानाडा, मोरक्को, ब्राजिल र प्याराग्वेले पहिले नै राउण्ड अफ 16 प्रवेश गरिसकेका छन्। अब अन्त्यमा सुन्नुहोस् यस बुलेटिनका मुख्य समाचार। भारतले स्पष्ट पारेको छ कि पाकिस्तानले सीमापार आतंकवादलाई समर्थन दिन जारी राखुन्जेल सिन्धु जलसन्धि स्थगित रहनेछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमबारदेखि इण्डोनेशिया, अस्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्डको 6 भ्रमणमा हुनुहुनेछ। रक्षा खरीद परिषदले रक्षा बलहरूको लड़ाई तयारी बढ़ाउन 52,000 करोड़ रूपियाँको रक्षा खरीद प्रस्तावहरूलाई अनुमोदन गरेको छ। सरकारले सुरक्षा चिन्ताको कारण गुगल प्ले स्टोर र एप्पल एप स्टोरबाट ब्याट बीएमएस, एपोक आई आयन र लसिकी एप्सहरू हटाउन आदेश दिएको छ। आज बिहान आधिकारिक रूपमा शुरू भएको वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा नुनवान, पहलगाम र बालटाल दुवै मार्गहरूबाट सुचारू रूपमा अगाडि बढ़िरहेको छ। र फिफा विश्वकपमा अस्ट्रेलियाले आज राति अमेरिकाको आर्लिङटनमा राउण्ड अफ 32 खेलमा इजिप्टको सामना गर्नेछ भने अर्जेन्टिनाले काबो वर्डेको सामना गर्नेछ। आकाशवाणीबाट समाचार पूरा भयो।
2: श्रोता, हामी आकाशवाणी गान्तोकबाट बोलिरहेका छौं। अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम युवा वाणी।
3: হয়েছে বলে নতুন দিল্লি পুনরায় জানিয়েছে। ভারত বলেছে তিস্তা নদী প্রকল্প নিয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিমধ্যেই বাংলাদেশকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা বাহিনী যুদ্ধ প্রস্তুতি বাড়িয়ে তুলতে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম অধিগ্রহণ পর্ষদ ডিএসই 52,000 কোটি টাকা সামগ্রী ক্রয় অনুমোদন দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী সোমবার 6 ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড সফর শুরু করবেন। লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বলেছেন বিধানসভা শুধু আইন প্রণয়নের জায়গা নয়, গণতন্ত্রের মন্দির। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতায় আজ তিনি নবনির্বাচিত বিধায়কদের 2 ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। ষোড়শ অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে নতুন দিল্লিতে আজ পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক জাতীয় স্তরের একটি কর্মশালায় নানা দিক খতিয়ে দেখেছে। বিশ্বকাপ ফুটবলে আজ ভারত

0: घरहरूको जियो ट्यागिङ गरिन्छ अनि कृत्रिम बुद्धिमत्ता
1: एआई
0: भनिन्छ नि, त्यो आधारित अनुगमन प्रणाली पनि प्रयोग गरिन्छ र यस प्रकारले यस योजना अन्तर्गत घर प्राप्त गर्ने परिवारहरूलाई अन्य योजनाहरूसँग पनि जोडिएको छ, जस्तै स्वच्छ भारत अभियान मिसन भयो, जल जीवन मिसन भयो, उज्ज्वला योजना भयो, पिएम सूर्य घर योजना, त्यस्तै निशुल्क अब बिजुली सम्बन्धी योजनाहरू छ यो भित्र, र यी सबैमा चाहिँ एकअर्कामा यो संयोजन भएको पाउँछौँ।
1: यस्ता विभिन्न योजनामा विशेष गरेर महिला सशक्तिकरण हामीले देखिरहेका छौँ अघि, र नकुलजी यो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो 12 वर्षहरूमा महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा ठूलो कार्य गर्नुभएको छ।
0: हजुर हजुर,
1: जति पनि कार्य भएको छ अहिलेसम्म पूर्णत रूपले नारी सशक्तिकरणलाई नै केन्द्रित गरेर गरिएको छ अघि, र यसमा तपाईँको के भन्नु छ?
0: त्यो अघि पनि मैले भने विशेष गरेर नारीहरूलाई चाहिँ एकदम यहाँ यसमा प्रधानता दिएको पाउँछौँ। जस्तो यो अघि मैले भने अझै अब भारत सरकारले त एउटा बिल ल्याइसकेको थियो कि नारीहरूले 33% चाहिँ आरक्षण पाउनुपर्छ, होइन? यो प्रकारले समग्रमा हेर्दाखेरि नारीहरूको लागि त थुप्रै योजनाहरू ल्याएको पाउँछौँ, जस्तो कि महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणको निम्ति चाहिँ लखपति दिदी भन्ने एउटा अभियान चलाइएको छ, र कुनै पनि राष्ट्रको वास्तविक विकास त्यस बेला मात्र सम्भव हुन्छ जब समाजका सबै वर्गहरू विकासको मूलधारामा सहभागी हुन्छन् अथवा जोडिन्छन्। विशेष गरी महिलाहरू आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा सशक्त नभएसम्म समावेशी विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन।
1: त चर्चा चौतारी कार्यक्रममा आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्थ्यो दार्जिलिङबाट आउनुभएका डाक्टर नकुल छेत्री, जो एकजना अवकाश प्राप्त शिक्षक हुनुहुन्छ, जसमा उहाँले प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकारको 12 साल कल्याणकारी योजनामा सामाजिक सशक्तिकरणतर्फ भारतको फर्को यस विषयमाथि चर्चा गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
0: हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु यहाँहरूले मलाई निमन्त्रणा दिएर यो मौका दिनुभयो। यहाँ समस्त टिमलाई नै मेरो हार्दिक
2: समय यस बेला बेलुकीको 8:45 हुन लागिरहेछ। अब अघिल्लो क्रममा दिल्ली केन्द्रको कार्यक्रमहरू रिले गरी यस केन्द्रबाट सुनाउनेछौ। प्रथम सुन्नुहुनेछ समाचार, जोडिरहनुहोला आकाश।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
4: India's position on the Indus Waters Treaty.
5: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
3: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
4: India's development assistance.
5: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से

0: और सेवा निर्यात में 10 से 11 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजी ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
3: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने

0: तीन दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। IMD के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। IMD ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई।

कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7:00 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। जब कभी अनमनी सी होकर शाम दिन के आंचल को झटक देती है, खुद को समेट लेती है अपने खेमे में, तो क्षितिज गुनगुना कर उसे मनाता है। कोई दिलकश सा नगमा चुनकर उसके उदास मन को गुदगुदाता है।

खोना कभी आसान नहीं होता। उसकी धड़कनें बता देती हैं वो छिपा है कहाँ। हर लम्हा समंदर की लहरों की तरह उठती गिरती हैं, जैसे आवाज लगाती हैं, कभी देखो तो यहाँ। इन्हीं लहरों की रवानी में गूंज उठता है दिल को चुराता हुआ कोई मीठा नगमा।

ये कैसे बताए कि चंद अल्फाजों से एक गुलशन किस तरह खिल उठता है, उम्मीदों का दरख्त कैसे झूम उठता है, किस तरह उस पर फूलों की तरह दुनिया के तमाम हसी रंग सज जाते हैं, और कैसे उसकी डालों पर बैठे ख्वाबों के पंछी सरगोशियां करते हैं, गुनगुनाते हैं।

वो रात जब चांद अपनी ही धुन में कुछ बुझा बुझा सा हो, धुंधलाया आसमान शांत झील सा लगता हो, सितारे तैरने लगते हैं यूं जैसे बत्तखों के झुंड, और कभी कश्तियों का रूप धर लेते हैं। इन्हीं कश्तियों पर जब बैठने को मचलता है दिल, तो चांद की बेदिली खुद ब खुद मिट जाती है। भीनी भीनी चांदनी के संग वो छेड़ देता है कोई अफसाना दिलकश सा।

हर रोज कुछ ऐसा ही होता है, दिन कुछ दिल फरेब नगमे कलम बंद करता है और फिर बड़े जतन से उन्हें वक्त के आंचल में संजो देता है। देर रात की छाया में हर रोज ये सुरीले गीत जाग जाते हैं, दिन की पेशानी पर रखते हैं मीठा सा बोसा और पलकों पर सुकून सजा जाते हैं।